मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे।

0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

श्रोताओं, एक सुबह जो जाग रही है पूरब के आसमान में, आइए सुने उसे। एक नई सुबह जो अंधेरे की समाप्ति का उद्घोष कर रही है, एक नई सुबह जो खिलती कलियों की भाषा में नई आशा की बात कर रही है। आइए सुबह के इन सभी स्वरों को समेटे आज के दिन में प्रवेश करें शुभ संकल्पों के साथ। सबसे पहले देश हित में नव संकल्प के साथ उसका गौरव गान कर

ये संसार नश्वर है। मोह के धागे से बंधा मनुष्य इस सत्य को विस्मृत कर जाता है, लेकिन भक्ति की अंतर यात्रा हमें बार बार बताती है कि उस हरि के अलावा इस जगत में हमारा कोई नहीं, वही हमारा एकमात्र सहायक, एकमात्र संरक्षक है।

हम सुबह शाम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रार्थना है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना सब कुछ भूलकर खो जाना है, जैसे शब्द, संगीत, नृत्य में मनुष्य खो जाता है। लेकिन सच ये है कि ये विस्मरण प्रार्थना नहीं है, ये पलायन है। प्रार्थना सम्यक चेतना के साथ हमारे जागरण का नाम है।

हम जिस ईश्वर को पुकारते हैं उसका कोई भी नाम हो, वो एक है। उसे हम किस दिशा में, किस स्थान पर पुकारें, वो तो हर दिशा में, कण कण में व्याप्त है। विधि विधान का वंदना से कोई संबंध नहीं। मंत्र, श्लोक, ऋचाएं जो हम दोहराते हैं मात्र शब्द हैं। वंदना उसकी सुध में खोए रहने का नाम है।

जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी एक आशा की ज्योति जिस कारण टिमटिमाती रहती है, वो भाव ईश्वर है, वो परम शक्ति है। उसके सहारे भक्त जीवन की सारी कठिनाइयां पार कर जाता है।

भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद दिलराज कौर, अनूप जलोटा, चित्रा सिंह और सुरेश वाडकर के गाए भजन। इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। स्वर है सुरेश वाडकर का, संगीत सतीश भाटिया का।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है अहम, आलेख विनय मोहन शर्मा का है।
1: हाँ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसके वशीभूत होकर दूसरों की अपेक्षा अपनी ही अधिक हानि करता है। उसका ईगो अर्थात अहंकार अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने के कारण उसकी प्रगति में बाधक होता है, क्योंकि वो जो कुछ जानता है उसे ही बहुत कुछ समझकर संतुष्ट हो जाता है। वो समझता है कि उसने जो कुछ ज्ञान संचित किया है वही सब कुछ है। उसके आगे उस विषय पर अधिक कोई सोच ही नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि एक ही विषय पर अनेक दृष्टिकोणों से चिंतन किया जा सकता है, परंतु अहमवादी का हट होता है कि उसका चिंतन ही अंतिम चिंतन है। उसमें अपने सहकर्मियों के प्रति सहृदयता और उनकी उपलब्धियों के प्रति उपेक्षा का भाव तीव्र होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके प्रति उसके सहकर्मियों में वितृष्णा का भाव जागृत होता जाता है। प्रेम या श्रद्धा तो कभी पैदा ही नहीं होती। अहमवादी आत्म केंद्रित होता है। वो ये भूल जाता है कि मानव मन की दृष्टि सर्वथा पूर्ण नहीं होती। उसे अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाकर अपने विचारों को पुष्ट बनाने की जरूरत होती है। एक पौराणिक आख्यान है, विश्वामित्र बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे, परंतु उनमें अहम की मात्रा बहुत अधिक थी। उनमें ये महत्वाकांक्षा जागृत हुई कि मैंने अधिक ज्ञान संपादित किया है, इसलिए सामान्य जन ही नहीं ऋषि मुनि भी उन्हें ब्रह्मर्षि कहें। लगभग सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्मर्षि कहना प्रारंभ कर दिया और इस तरह उनके अहम को तुष्ट किया। परंतु वे चाहते थे कि जब तक वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं मानेंगे उन्हें संतोष नहीं होगा। वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र का अहम बढ़ता जा रहा है, अतएव उन्होंने उन्हें राजर्षि ही कहा, ब्रह्मर्षि नहीं। इस पर विश्वामित्र इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने जैसे अपना सारा ज्ञान भुला दिया हो। उन्होंने वशिष्ठ को अपना घोर विरोधी माना और उनके वध को उद्यत

0: गए। एक रात उनकी कुटी के बाहर जाकर छिप गए और घने अंधकार की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उनके कान में वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का वार्तालाप सुनाई पड़ा। अरुंधति पूछ रही थी कि इस समय सर्वश्रेष्ठ ऋषि कौन है। वशिष्ठ ने तुरंत कहा, निर्विवाद विश्वामित्र सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं। विश्वामित्र ने जो ही यह वार्तालाप सुना वे भौचक्के से रह गए, मन ही मन ग्लानी से भर गए। अरे, मैं जिसका वध करने आया हूँ वो तो परोक्ष में मेरी ही प्रशंसा कर रहा है। उनसे नहीं रहा गया, तुरंत लज्जित हो प्रकट हुए और आंखों में आंसू भरकर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और कातर वाणी में बोले, आप महान हैं, मैं तो अहम के वशीभूत होकर आपका वध करने आया था, आप तो परोक्ष में मेरी ही प्रशंसा करते हैं। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो ब्रह्मर्षि। यह सुनकर विश्वामित्र और भी आश्चर्य में डूब गए। तब वशिष्ठ ने कहा, मित्र, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या और ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, अहम का त्याग भी आवश्यक है। आज आपने मेरे चरणों में झुककर अपने अहम का त्याग किया है, इसीलिए मैंने हर्षित हो तुम्हें ब्रह्मर्षि कहा है। अहम के त्याग से मनुष्य में विनम्रता आती है, जो अपने विपक्षी को भी वश में कर लेती है। संसार के महान पुरुष अहम के कारण ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। इतिहास में इस तरह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के लोग अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं, यानी दुख पा रहे हैं। वे ही लोग जो सज्जन हैं इनसे बचे रहते हैं और इसीलिए उन्हें शांति मिलती रहती है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, इसमें विषय था अहम, आलेख था विनय मोहन शर्मा का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है आगामी खरीफ फसलों में हेतु प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर ऋषिकेश मंडलोई।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम कृषि चर्चा में आपसे चर्चा करेंगे आगामी खरीफ फसलों में प्रबंधन की। किसान भाइयों, आपने निश्चित ही आने वाली इस खरीफ फसल की तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आप सभी हम जानते हैं कि खरीफ की जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से उनके ऊपर जो प्रभाव होता है मौसम का विशेष रूप से होता है, वर्षा का विशेष रूप से फर्क पड़ता है। क्योंकि इस खरीफ की फसलों में हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से लगाई जाती हैं सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, मक्का लगाई जाती है और सरसों लगाई जाती है। और इन फसलों में आपको मैं बता दूं कि जो सोयाबीन की फसल जो हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है, इस फसल में सबसे बड़ी जो समस्याएं आती हैं रोगों की और कीटों की आती है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब फसल लगा रहे हैं और उस समय जब कोई प्राकृतिक कीट और व्याधि की समस्या आती है और यदि हम उस समय कोई प्रबंधन करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं, देरी हो जाती है। और कुछ प्रबंधन के प्रयास हमें फसल लगाने से पहले हमें अपने विचारों में लाना होता है कि पहले हम ऐसे प्रयासों को अपनाएं ताकि जो निश्चित ही कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं जब हम फसल लगाते हैं तो समस्याएं आती ही आती हैं, प्रतिवर्ष आती हैं। स्वरूप में, अंश में, भार में अंतर आता है कि कभी कुछ थोड़ी ज़्यादा आती हैं कभी कम आती हैं। तो कीटों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कीटों में सोयाबीन में अभी हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार एक ही फसल लगाई जा रही है किसानों के द्वारा सोयाबीन, तो ऐसी स्थिति में मोनोक्रॉपिंग की स्थिति बन रही है। लगातार कीड़ों के लिए एक अनुकूल वातावरण बन रहा है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है तो उनका जनसंख्या बल भी बढ़ता जा रहा है। आपने कोई कीटनाशक का उपयोग किया तो कीट मूव करके दूसरे प्रक्षेत्र में दूसरे के किसान के खेत में चले जाएंगे, दूसरे ने करा तीसरी ओर चले जाएंगे। उन्हें लगातार अपना जीवन चक्र बनाए रखने के लिए अनुकूल स्थितियाँ मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आपको फसल चक्र अपनाने की कोशिश करना चाहिए। क्यों ना आप उसका एक विकल्प तैयार करें ताकि आप एक दूसरी फसल लगा सकें। दूसरा ये

0: कहना चाहूँगा कि आप ऐसी उन्नत किस्मों का चयन करें जो कि कीट और व्याधि से कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता रखती हूँ। अभी नवीनतम किस्में बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं जिनमें नैसर्गिक रूप से कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें संभवतः कम कीटों का प्रकोप होता है या कम रोगों का प्रकोप होता है। दूसरा, फसल लगाते समय एक प्रयास आपको और करना है किसान भाइयों, जो आप निश्चित ही मैं प्रचेत भ्रमण में देखता हूँ कि गलती करते हैं, बीज दर अधिक रख देते हैं। जितनी भी संतुलित बीज दर है उससे आप कहीं ना कहीं कुछ अंश में ज़्यादा बीज का उपयोग करते हैं। मैं जानता हूं कि अंकुरण के कारण आप ये मानसिकता रखते हैं कि एक अंकुरण प्रतिशत कम हुआ, मगर उसका कुछ रेशो का ध्यान रखें। कुछ अंश और बहुत में बहुत अंतर होता है। आप जब ज़्यादा बीज दर का उपयोग करेंगे तो एक निश्चित इकाई में प्रति पौधों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। अब जब एक निश्चित एरिए में पौधों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कीटों का भी प्रकोप अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम कहें उमस वाली कंडीशन बनेगी जिसको हम वार्म ह्यूमिड कंडीशन बोलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में समस्या आएगी, रोगों का प्रसार अधिक होगा। आपको कीटों और रोगों के प्रबंधन में ज़्यादा आपको बहुत प्रयास करना होंगे, खरपतवार की समस्या होगी। तो इस सारी समस्याओं का एक छोटा सा कारण होता है बीज दर। अब आप क्या होता है, बीज दर बढ़ा देते हैं, बाद में इन समस्याएँ आती हैं, आपको इनको प्रबंधन करने में बहुत लागत लगती है, बहुत खर्चा होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हमें जितनी भी अनुशंसित बीज दर बताई गई है उतना का ही उपयोग करें, हम अनावश्यक रूप से क्यों हम लागत बढ़ाएं। सिंचाई का ध्यान रखें, आपके खेत की मिट्टी की क्या स्थिति, यदि मिट्टी की मृदा की स्थिति बहुत काली है और जल धारण क्षमता बहुत अधिक है तो जल निकास नालियों की व्यवस्था बनाए रखें, और आपको जितने भी जल निकास का क्षेत्र है ऐसा भाव बना के रखना है कि आपके खेत में पानी ना ठहरे। आप जब ट्रैक्टर से आसारे खींचते हैं या नालियाँ बनाते हैं तो उस समय आपका पानी का बहाव की दिशा ढलान की ओर रखना है ताकि पानी खेत में ना ठहरे। तो ये मैं आपको बहुत कुछ जानकारी तो इस निश्चित समय में नहीं दे पाया, मगर मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आप लोगों किसान भाइयों के साथ आपके सामने एक प्रकाश डाला है, तो निश्चित ही ये मेरी बातें आपको लाभकारी सिद्ध होंगी। तो किसान भाइयों बहुत बहुत नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, इसमें विषय था आगामी खरीफ फसलों हेतु प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर ऋषिकेश मंडलोई। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: जनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्र से सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मंडलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मंडल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5,00,000 टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में

तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना

तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनेंगे मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा के साथ एक मुलाकात, विश्व परिवार दिवस के बारे में शासकीय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में समाजशास्त्र की प्रोफेसर इंदिरा बर्मन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा से बातचीत, और खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी सोनी से हर घर योग अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों के संबंध में जानकारी। आज 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, गांधी चर्चा सुनने का 9:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 9:30 पर। 10:00 आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी। महिला संसार, महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन, रागों का यामिनी बिलावल।

शाम 7:00 के 21 मिनट पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा। आइए अब आपको आज के मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में सुबह 11 बजे आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 से संग्रहालय से कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे पंचतंत्र धारावाहिक का दूसरा भाग। 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 1:30 पर। 1:45 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। 2 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 2:30 पर। आइए अब जानते हैं आज के सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। आज शाम 5:02 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:33 पर। 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है सुर्खियों में सुनेगा रात 8 बजे। 8:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:30 पर सुनिएगा खेल जगत। इसमें आज आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट विषय पर देवेंद्र खुराना की वार्ता। 9:45

पर आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन, रागों का जयंत मल्हार। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी।
1: हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्यप्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है, उससे हमने संतोष व्यक्त किया।
0: वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है।
1: प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्यप्रदेश में हुई। 16 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम गेहूं जमा कर चुके हैं। ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके।
0: दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी मेट्रो बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसों में घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए थे, जिन्हें देवास और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देवास जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पवन पाटीदार ने घायलों को लेकर

0: कर जानकारी दी।
1: हमारे पास सुबह 3:30 बजे खबर आई थी कि कला के पास में पटाखे फैक्ट्री में आग लगी है। तो आसपास जो स्थिति थी उसमें कम से कम हमारे पास 28 लोग आए थे, जिसमें से हमने 13 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया इंदौर के लिए, क्योंकि 12 लोग हमारे पास स्थिति नॉर्मल थी तो हमने एडमिट कर लिया था। मृतकों की एक संख्या बढ़ी थी 4 से।
0: इस बीच पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और आगजनी मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इधर संभागायुक्त आशीष सिंह ने टोक कला में संचालित आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय फैक्ट्री में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश जारी किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसुमरिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह योजना प्रदेश के 20 चयनित जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य OBC वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL में मुंबई इंडियंस ने कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसके जवाब में 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और VIP संस्कृति पर बड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन से भोपाल लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे ठाकुर को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ में भी तीव्र लू चलेगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभाग के जिलों में 18 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके पहले कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत आज से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर ITI में युवा संगम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के सांदीपनी विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह में 166 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मंडला के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शामिल होंगे। गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरसाती नदी एवं सिद्ध की झिरिया क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्टर शाजापुर ने आगामी त्योहारों के चलते प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ, कृषि, सिंचाई और UCC जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में बस इतना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गर्मी की तपिश यूं तो माथे पर शिकन ले आती है, लेकिन इतना तय है कि सवेरा हमेशा की तरह सुहाना और खुशगवार होता है। ठीक उसी तरह जैसे आप सभी श्रोता हमसे जुड़कर इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना देते हैं, और हो भी क्यों ना, आप हमारे अपने जो हैं और हमारे परिवार का खास हिस्सा बन चुके हैं। और जो एक बार किसी परिवार का हिस्सा बन जाता है तो फिर हर कदम पर साथ चलना भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और इस मामले में हम खुशनसीब हैं कि आप इस बात को बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं, और आज 15 मई के खास दिन विश्व परिवार दिवस के उद्देश्य को भी सार्थक बना रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1993 में प्रत्येक वर्ष की 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मंशा यही थी कि परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाए और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं में ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। और वर्ष 2026 की थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, जो इस बात पर जोर देती है कि बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य पर किस प्रकार प्रभाव डाल रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, क्योंकि आज परिवार के नाम पर घर 3 या 4 सदस्यों तक सिमट कर रह गया है, और मेलजोल, हंसना बोलना, मिलजुल कर हर अवसर को मनाना, घूमना फिरना जैसी बातें बहुत सीमित हो गई हैं। एकाकीपन, तनाव आदि का प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया है। तो ये दिन कुछ ऐसा ही संदेश देता है कि हम उन लम्हों की ओर लौट चलें जब संसाधन कम थे, सुविधाओं का अभाव था, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी अपनों का साथ। तो आइए वही वक्त वापस लाने का प्रयास करें, हर घर को एक मंदिर का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करें। तो विश्व परिवार दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: प्यार का मंदिर फिल्म का गीत आपने सुना, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नमस्कार, भोपाल की महफिल का आगाज हो चुका है। अब से लेकर 8 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ और लेकर आए हैं आपके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम चर्चा करेंगे विश्व परिवार दिवस पर और इसके साथ ही मिलेंगे मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा के साथ और बात करेंगे हर घर योग के संबंध में चल रही खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान की गतिविधियों पर। बस सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। कुछ ही पलों में हम बात करेंगे समाचार पत्रों की।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। इस वक्त आप भोपाल रेडियो का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार भोपाल।
0: इस समय जारी है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 7:26 और 38 सेकंड हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर है, 19 राज्यों में 30 मई से SIR चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की घोषणा की है। ये SIR का तीसरा फेज होगा। ये पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। और अगली खबर है, शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ आज। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज 15 मई को सुबह 11 बजे शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सपनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मौसम का मिजाज कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, दिन में गर्मी पर शाम को बौछारों के आसार। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मानसून की हलचल दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 48 घंटों में अंडमान निकोबार पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ में बादल छा सकते हैं। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना और सिंगरौली में हल्की बारिश की संभावना है। और एक नया समाचार आपके लिए है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबले से होगी। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अनौपचारिक शुरुआत हॉकी मुकाबले से होने जा रही है। हॉकी इंडिया द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 टीमों के बीच खेली जा रही 4-4 मैचों की सीरीज का एक मुकाबला अब यहां खेला जाएगा। पहले सभी 8 मुकाबले साई सेंटर में प्रस्तावित थे, लेकिन गुरुवार को निर्णय लिया गया कि महिला वर्ग का एक मैच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम पर कराया जाएगा। और खेल जगत की खबर में IPL की बात करें तो लगातार 5वां मैच हारी पंजाब किंग्स। IPL 2026 में शुरुआती 7 मुकाबलों में भी एक मैच नहीं हारने वाली पंजाब किंग्स की गाड़ी अब पूरी तरह पटरी से उतरती दिख रही है। राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध 28 अप्रैल को शुरू हुआ पंजाब किंग्स की हार का सफर गुरुवार को भी जारी रहा। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से पंजाब को हरा दिया। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई कार्यक्रम है तो उसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि नमस्कार भोपाल के माध्यम से हम पहुंचते हैं दूर दूर तक।

0: और आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये नमस्कार भोपाल की महफिल है जो 8 बजे तक रोजाना सस्ती है। इसमें नामी हस्तियों से मुलाकात होती है और होते है आपके लिए स्वस्थ मनोरंजन। और कुछ पलों में हम आज की पहली जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: तमाम सुनने वालों को टॉम वॉल्टर का नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जिसका नाम है नमस्कार भोपाल।
0: समय मिलाइए सुबह के 7:31:59। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की कि आज 15 मई है और आज विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है। और एक बेहतर परिवार की अवधारणा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सब मिलकर साथ रहें, ये परिकल्पना सामने आती है। विश्व परिवार दिवस को लेकर हमने कुछ और चर्चाएं की हैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा बर्मन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा के साथ।
2: भारत जैसे देश में जिसने वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है उसको रखा था, हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते थे, ऐसे देश में परिवार दिवस मनाने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में खास करके जो शहरी जो परिवेश है उस परिवेश पे अब ऐसा लगने लगा है कि परिवार की उपादेयता, परिवार का संकल्पना, परिवार की परिकल्पना, इन सब चीज़ों को जनसाधारण के मध्य एक अवेयरनेस आना चाहिए कि परिवार का क्या महत्व है।
0: मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि परिवार की अवधारणा जब हम देखते हैं तो हमारे संयुक्त परिवारों का जो परिकल्पना वो सामने आती है कि जिसमें बच्चे भी थे, पति पत्नी भी थे, दादा दादी भी थे, खुशनुमा माहौल हम देखते थे। इंदिरा जी, आपको क्या लगता है कि विश्व परिवार दिवस की जब हम बात करते हैं तो परिवार को सही मायने में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
3: परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक पहचान दिलाना, उसको कल्चर्ड करना और उसको सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना एक परिवार से ही शुरू होती है। एक परिवार सुदृढ़ होगा और परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छे नागरिक देश को भी मिलेंगे, और अगर अच्छे नागरिक देश को मिलते हैं तो राष्ट्र भी अच्छा होगा। तो परिवार जो है पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। विश्व परिवार दिवस की जब हम चर्चा करते हैं तो इटली है, वियतनाम है, कतर है, कुछ ऐसे देश है जहाँ पर विस्तारित परिवार पाए जाते हैं आज भी, पर पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है भारत उसकी तरह परिवार की व्यवस्था कहीं नहीं देखी जाती, जहाँ जितनी सुरक्षा, जितने सामाजिक मूल्य संस्कारों से युक्त किया जाता है, एक जिम्मेदारी, एक त्याग की भावना, भावात्मक सुरक्षा हमारे देश में परिवार में जो प्राप्त होती है वो विश्व के किसी देश में प्राप्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार की परिकल्पना है भारत में सबसे उत्कृष्ट और उच्च कोटि की मानी जाएगी।
0: मनीष जी, परिवार के जो मायने हैं वो बदलते जा रहे हैं, ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को अपनी जड़ों की ओर ले चलें और कैसे उनको बताएं कि हमारा परिवार जिसमें खुशहाली अगर हम चाहते हैं तो वो संयुक्त परिवार से ही संभव है।

0: बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने सर। मैं तो पैदा हुआ पला बड़ा कलकत्ता में, लेकिन मूल मेरा बिहार है। तो मैं जब पहले गांव में जाता था तो मेरी माँ से वहाँ के आसपास की औरतें पूछती थी कि भोजपुरी में कि रउआ देसे कौ गो लेकर, मैंने आपके शरीर से कितने बच्चे, तो बड़ा अटपटा सा प्रश्न उस समय लगता था। लेकिन आज उसका समझ मुझे आया है कि जैसे पहले लोगों को पूछते थे आपके कितने बच्चे, तो 22-23 साल की युवती बोले 7 बच्चे, कैसे, तो 2 जेठ के बच्चे हैं, 2 भाई साहब के बच्चे हैं, देवरानी जेठानी के बच्चों को भी अपना बच्चा बता के बताना, तो बड़ा अच्छा लगता था कि पूरे। अब जो है सिर्फ हमसे कितने बच्चे पैदा हुए वहीं तक हम सिमट के रह गए, और बच्चे भी जो है अब इस तरह भाग रहे हैं कि माई लाइफ माई वे, माँ पिताजी आपने पैदा किया तो इसका मतलब आप मेरी जिंदगी पर आपका कब्जा नहीं है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। तो ये जो चेंज आ रहा है गांव से शहर आते आते और शहर से महानगर कॉस्मोपॉलिटन की तरफ जाते जाते, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। पति पत्नी दो ही रह रहे हैं और दोनों में जब थोड़ा सा भी अनबन हुआ तो उसको संभालने वाला कोई नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, बच्चे गाते फिरते कि मैंने माँ को देखा, माँ का प्यार नहीं देखा।
1: इसी बात से मैं इंदिरा जी से भी जानना चाहता हूं कि न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं या फिर ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, किस तरीके के फायदे किस तरीके के नुकसान सामने आते हैं इन दोनों परिकल्पनाओं से।
2: ज्वाइंट फैमिली जो हुआ करती थी वहां पर हर तरह के सदस्य का ख्याल रखा जाता था, चाहे वह कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो। पर आज जो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, बच्चे पैदा करना पसंद नहीं कर रहे आज के जनरेशन। और इसके कारण क्या है, लगता है कि परिवार का नाम क्या होगा, क्या पति पत्नी के बाद परिवार समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो अब नए नए चीजें आ रही हैं सोसाइटी में, सामाजिक मूल्य जो है सिर्फ एक व्यक्ति के स्वार्थ तक सीमित होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे मूल्यों को हस्तांतरित करने के लिए, हमारे परंपराओं को हस्तांतरित करने के लिए, हमारे कल्चर को हस्तांतरित करने के लिए जो एक मजबूत परिवार व्यवस्था हुआ करती थी वह धीरे धीरे जो खत्म हो रही है। तो ये एक सोच का विषय है कि परिवार अगर इस तरह से सोच वाले हो जाएंगे तो सबसे बड़ा जो सपोर्टर होता है परिवार। एक व्यक्ति कहीं भी दुनिया में कहीं से भी हराश होता है, कहीं से भी थकता है, कहीं से भी हारता है, तो सीधे एक स्थान है जहां मां की गोद या परिवार माता पिता जहां जाके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पर जब वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है।
1: इंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि परिवार वो इकाई होती है जहां पर कोई भी थका हारा मेहनतकश व्यक्ति जब अपने घर लौटता है तो उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो मनीष जी, ऐसी परिकल्पना को वापस लाने के लिए, वापस हम अपनी जड़ों पर लौटने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बलवती करने के लिए कौन कौन से प्रयास करने होंगे।
0: पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण समाज का बोलबाला था, उस समय हम ज्वाइंट फैमिली की परिकल्पना जिस रूप में करते थे वो आज की तारीख में संभव नहीं है। मोहल्ले में आसपास वाले लोग हम चाचा ताई ताऊ ऐसा कहते थे, मौसी कहते थे, उनको भी एक परिवार का अंग मानते थे, खून से जुड़े हुए नहीं थे, हमारे खानदान के नहीं थे लेकिन एक परिवार के रूप में रहते थे। अब जैसे जैसे अपार्टमेंट का लाइफ आने लगा तो पड़ोसी को भी हम नहीं जान रहे, इसी कारण तो हम ज्वाइंट फैमिली की जब बात करें तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अब पूरे के पूरे 36 लोग एक साथ ही रहे। लेकिन जब हम परिवार की बात करें तो हमारे साथ जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनको सोचते हुए जो नहीं रह रहे चाचा या बड़े पिताजी, उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। हम देख रहे हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों करूँ, तो मैं क्यों करूँ वाली जो बात है उसको थोड़ा हटाए। और दूसरा, मैं चूंकि 16 साल अरुणाचल प्रदेश में बिताया हूँ तो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल्स में मैं जो देखता था वो पूरे गांव के गांव अपने आप को एक परिवार मानते थे। तो वो ऐसा मानना कि ये हमारा जो है मानसिक एक तरह से एक कल्चरेशन है। तो हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाएं अमंग द यूथ।
1: चलते चलते हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं वर्ल्ड फैमिली डे पर।
2: मैं परिवार दिवस में सबको यही कहना चाहूंगी कि आइए हम इस विश्व परिवार दिवस में एक संकल्प लें कि हम अपने रिश्ते को समय देंगे, संवाद को जीवित रखेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, संस्कार और मानवता की अमूल्य धरोहर सौंपेंगे।
1: बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, मनीष जी और इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप।
2: थैंक यू।
1: हमारे साथ थी समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा बर्मन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक परिवार को परिभाषित किया। तो अपने परिवार में हर पल को खास बनाइए अपनों के साथ, क्योंकि साथ साथ चलकर ही हम कामयाबी की नई कहानी लिख सकते हैं। हैप्पी वर्ल्ड फैमिली डे टू ऑल।

0: जरूरी जानकारी हो या शहर का हाल, सब कुछ लेकर आता नमस्कार भोपाल। नमस्कार भोपाल का आनंद आप ले सकते हैं मीडियम वेव के साथ साथ डीटीएच की ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर। और कुछ ही देर बाद हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे।
1: मैं हूं पेंटल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय प्रोग्राम नमस्कार भोपाल।
0: सुबह के 7:42 हुए हैं, जारी है नमस्कार भोपाल की महफिल और अब कार्यक्रम में आगे का रुख करते हैं। हाल ही में डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। बाल अधिकार, बाल कल्याण और उन्हें एक सुखद वातावरण देने के लिए प्रयत्नशील डॉक्टर निवेदिता शर्मा से हमने की है एक छोटी सी मुलाकात। सबसे पहले तो डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।
0: ये आपके लिए कितनी बड़ी एक चुनौती भी है और एक उपलब्धि भी है।
2: चुनौती बड़ी है क्योंकि बच्चे मध्य प्रदेश में जो है उनकी स्थिति को सुधारना और पूरे 55 जिलों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे केवल CNCP नहीं होते, बच्चे स्कूलों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो हर तरीके की जिम्मेदारी है आयोग के ऊपर कि प्रत्येक बच्चे को न्याय मिले, तो चुनौती बहुत बड़ी है।
0: मध्य प्रदेश में जब बाल अधिकारों की बात आती है, उनके संरक्षण की बात आती है, तो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनका कितना प्रतिफल मिलता जा रहा है और बच्चों को अधिकारों के प्रति हम किस तरीके से सचेत कर पा रहे हैं, उन्हें दिला पा रहे हैं?
2: जन जागृति और अधिकारों के प्रति जागरण के लिए तो लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जाते हैं। हर एक विभाग इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सामाजिक न्याय विभाग हो। बाल आयोग का यही है कि जो शासन की योजना है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे, परंतु इंटीरियर इलाकों में इसकी बहुत बड़ी कमी है कि जैसे बाल विवाह हो रहा है तो कोई बच्ची नहीं चाहती है तो वो शिकायत कहाँ करे, तो उसको आसानी से कोई चीज उपलब्ध हो जाए कि मैं शिकायत कहाँ करूँ। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए समाज के प्रति, देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसकी भी बात आयोग की ओर से हमेशा की जाएगी।
0: मध्य प्रदेश में जब बच्चों को हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मजबूर है मजदूरी करने के लिए, व्यवस्थाएं हैं उनकी कुछ, ऐसे बच्चों को आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपनी तरफ से कौन कौन से प्रयत्न करेंगी, कुछ योजनाओं पर भी काम करेंगी?
2: जो अभी हमारा जेजे एक्ट चलता है, तो जेजे एक्ट के अंतर्गत जो हमारे CCI चलते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे ये देखने में आया है कि CCI कम हो गए हैं, तो ये प्रयास है कि कम से कम 2 जिलों के बीच में एक बालिका गृह और एक बाल गृह ये जरूर स्थापित हो जाए। इसमें हमारे पूरा सिस्टम को लगना पड़ेगा, महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग इसको मिलके स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ करें। SC ST छात्रावास है।

0: उनमें सुधार आ जाए कि प्रत्येक बच्चा वहां जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो कि हाँ मेरे को एक पढ़ने का अवसर मिला है। जो स्कूल खाली पड़े हैं सरकारी विद्यालय, स्कूलों की भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, खासतौर पर बच्चियों के लिए जिनका ड्रॉप आउट हो रहा है। शौचालय ना होना, सैनिटरी नैपकिन जैसी व्यवस्था ना होना, बहुत इंटीरियर इलाकों में बच्चियां ड्रॉप आउट कर लेती हैं क्योंकि कह नहीं पाती हैं। तो इसके लिए भी अभी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा वो उसके लिए बिल्कुल एडवाइजरी जारी करने वाला है।
1: आपने शिकायत की बात की, तो शिकायत में हमने देखा है कि बच्चे बहुत झिझकते हैं क्योंकि बाल अपराध को हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों की शिकायतों को सुनने के लिए किस तरीके से आप अभिभावकों के साथ भी कुछ समन्वय स्थापित करना चाहती हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की है। जब वो एक बार आपको शिकायत कर रहा है माता पिता को, और जब आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या वो कभी भविष्य में अपनी बातें कहेगा क्या? तो पहले माता पिता को निर्भीक बनाना। पॉक्सो के केसेस में भाई मुंह छुपाना अपराधी का काम है ना, अपराधी को मुंह छुपाना चाहिए, उसने गलत काम किया है। माता पिता इस डर से कि मेरी बदनामी हो जाएगी, इस डर से वो आते ही नहीं है। जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध FIR क्यों ना दर्ज की जाए। तो ये जो जागृति है ये बड़े लोगों के सामने ज्यादा लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम स्कूलों में जाते हैं बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाते हैं, इसके बजाय स्कूलों में अभिभावकों को बुला के उनको इस बारे में समझाना कि अगर भगवान ना करे, मैं से तो ये कहती हूँ नहीं हो किसी के साथ, अगर हो गई है तो आपके लिए सरकार ही ये प्रावधान कर रही है।
1: बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं जो कि बाल कल्याण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों की शिकायतों के निवारण की बात हो या उनके बेहतर भविष्य की बात हो, छात्रवृत्ति इत्यादि की जो जानकारी प्रदान करने वाली बात हो। तो NGO के साथ किस तरीके से समन्वय आप बैठा कर कुछ नए निर्देश देना चाहती हैं ताकि इस काम में और तेजी मिले और बच्चों को एक बेहतर भविष्य की तरफ वो बढ़ सके?
0: देखिए संजय जी, मैं अभी कहूँ कि तो मैं सिस्टम के अंदर लगभग 6 साल से काम कर रही हूँ, बाल कल्याण समिति में भी रही हूँ मैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, फिर भी हम देखें कि वो आउटपुट नहीं मिलता हमको। तो जरूरत इस चीज की कि सारी NGOs को एक अम्ब्रेला के नीचे लाके उनका समन्वित प्रयास किया जाए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है फिर हम भी उसी पे काम कर रहे हैं फिर तीसरा भी उसी पे काम कर रहा है। समेकित योजना बनाई जाए कि भाई तुमको इस सेक्टर में काम करना है, तुमको इस सेक्टर में काम करना है, तो उसका आउटपुट हो जाएगा क्योंकि उनकी भी एक लायबिलिटी तय हो जानी चाहिए। बाल आयोग बिल्कुल इसको इनिशिएट करने का प्रयास करेगा कि NGOs भी जिस पर्पस से बनी है वो अपना अच्छा आउटपुट इस समाज को दे पाए।
1: बच्चे आने वाले कल के कर्णधार हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए। इस सिलसिले में और कौन कौन से बिंदु आपके मन में चल रहे हैं जिन पर आप फोकस करना चाहेंगी अपने इस कार्यकाल में?
0: एक तो शिक्षा सुलभ हो और सस्ती हो, थोड़ी सी जो योजना है जो अभी कहीं ना कहीं छूटी हुई है, बाल भिक्षावृत्ति है, दर्द महसूस होता है, माता पिता को ये समझाना जरूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकल पाए, और शासन ने कहा भी है कि अपराध है, तो इसके लिए भी आयोग बिल्कुल प्रयास करेगा।
1: चलते चलते आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमारे कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या देना चाहती हैं?
0: आयोग हो, बाल कल्याण समिति हो, मंत्रालय हो, सरकार हो, ये सब अपनी जगह पे है। अगर ये समाज हम सब एक साथ खड़े हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों की इतनी जो समस्या आजकल हो रही है, क्योंकि कानून बनते जा रहे हैं समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, तो समाज अगर हमारा साथ दे दे तो बिल्कुल ही उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: और बहुत धन्यवाद संजय जी।
1: ये थी एक छोटी सी मुलाकात मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा के साथ। हम आशा करते हैं कि उनके प्रयास बच्चों के जीवन में खुशियों के रंग लेकर आएंगे, बेहतर शिक्षा अनुकूल वातावरण के बीच वे स्पर्श करेंगे ऊंचे शिखर को, खिलखिलाएंगे और गाएंगे खुशियों भरे तराने।

0: सुबह का वक्त काफी मसरूफियत भरा होता है, लेकिन नमस्कार भोपाल आपके लिए सुनना बहुत आसान है क्योंकि अब वो मोबाइल पर भी उपलब्ध है। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर जाइए और बहुत करीब से सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: मैं हूँ पूर्ण चंद वडाली।
2: मैं हूँ प्यारे लाल वडाली।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल।
0: सुबह के 7:51 और 23 सेकंड हुए हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना होगा, कसरत करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी होगी अथवा जुड़ना होगा योग से। जी हाँ, योग जिसकी महिमा को पूरी दुनिया ने जाना है और दिल से इसके फायदों को भी समझा है। बस चंद रोज का वक्त बचा है जब 21 जून को हम मनाएंगे अगला विश्व योग दिवस, लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियों का आगाज हो चुका है और इसी का हिस्सा है अभियान हर घर योग। इसके तहत खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में 45 मिनट के नियमित सत्र भी शुरू किए गए हैं। आज हमारे साथ और जानकारी दे रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी सोनी।
3: ये अभियान बहुत खास है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइडिज्म, सारी बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ना, फैटी लीवर। इसके लिए हर घर योगा जो हम प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। इसके द्वारा हमारे जो मेटाबॉलिज्म है सारे लोगों का वो बहुत अच्छी तरह से बेहतर होगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो इम्प्रूव होंगी। इतने अच्छी तरीके से योगा कराया जाएगा कि लोगों के हेल्थ इम्प्रूव होंगे, जिनको कोई बीमारी नहीं उनको प्रिवेंशन पे काम होगा और जिनको है उनका कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर ये सारी चीजें काफी कम होंगी।
0: भारत की पहल पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अपने आप में ये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, इस अभियान के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे थोड़ा बताएं।
3: हर जगह हर कॉलेजेस में सारे योगा का कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जैसे कि सौरभ बोथरा जी हैं जो कि बहुत अच्छा हाब बिल्ड करके है जिसके तहत वो पूरे भारत को योगा करा रहे हैं। ये IIT BHU से पास्ड है, तो मतलब IIT BHU से करने के बाद और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो ये तो बहुत पहले से ही योगा करा रहे थे और मैंने इनको बहुत पहले से ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रखे थे। अभी इन्होंने राजीव देसाई जो इंस्टीट्यूट बैंगलोर से उससे कोलेबोरेशन करके जो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और उनके उन्होंने सबसे अच्छा ये किया कि सेशंस हैं, आपको अगर सुबह जमता है तो सुबह का टाइम भी इन्होंने सेशन 5:30, 6:30, 7:30 से और शाम को भी 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से उन्होंने रखा है, तो उसके तहत हम कभी भी कर सकते। तो हमारे तो पूरे संस्थान में लगभग सभी लोगों ने, हमारे PG स्कॉलर्स, हमारे जो शिक्षक गण हैं टॉप टू बॉटम, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, सभी लोग इस में हम सब ज्वाइन कर रहे हैं और रोज हम सुबह शाम जिस वक्त टाइम मिलता है सुबह या शाम को हम इनको ज्वाइन करते हैं। बोथरा जी के साथ हम लोग योगा करते हैं प्रतिदिन।
0: तो खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में जो योगा के सेशन चल रहे हैं, उन्हें कोई ज्वाइन करना चाहता है और इससे जुड़कर लगातार आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है?
3: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑलरेडी हर रोज हम योगा कराते हैं, प्रतिदिन शाम को योगा डिपार्टमेंट के फैकल्टीज हैं वो और उनके हमारे PG स्कॉलर्स हैं वो हर प्रतिदिन योगा कराते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो बिल्कुल हमारे विभाग में आ सकता है, मिल सकता है। स्वस्थ वक्त डिपार्टमेंट जो हमारा योगा कराता है तो उनसे संपर्क करके योगा के बारे में, यहाँ योगा होता है हमारा, वो सीख सकते हैं। और सुबह 8 बजे से हमारे शिक्षकगण, सभी शिक्षकगण आके इकट्ठा होकर, हमारे सारे बच्चे भी सुबह योगा करते हैं हम लोग बिल्कुल प्रतिदिन नियम से।
0: जब आपसे बातचीत का अवसर मिला है कामिनी मैडम, तो बताएं कि रोजमर्रा की जिंदगी में तकरीबन कितना समय हमें योगा के लिए निकालना चाहिए और किस तरह के योगों को अपनाकर हम अपने रूटीन को एक बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं।
3: प्रतिदिन 1 घंटा

0: समय काफी है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे जब आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी तो आप रेगुलर योगा करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फॉगीनेस कम होती है, और हमारे जो थॉट्स में जो कन्फ्यूजन होता है, कई बार बहुत सारा फॉगी माइंडेड कहते हैं उसको, क्लैरिटी नहीं होती, तो योगा से वो सारी चीज़ें बहुत इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी योगा से बहुत इंप्रूव होती है। फैटी लिवर की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है वो हमारी कम हो जाएगी। जिनका बहुत ज्यादा पेट बाहर निकला है, ओबेसिटी है, पेट बाहर निकल, शरीर में अलग अलग जगह पर चर्बी इकट्ठा हो रही है, बटक्स में जैसे फैट डिपोजिशन वाले एरिया, उसे थाइज में, हाथों में, टमी में, कमर में, तो वो सारे एरियाज भी आपको एक अच्छी सी पर्सनैलिटी भी मिलती है एज वेल एज, और आपके मेंटल कामनेस वो बहुत स्पेशल है। इसलिए योगा करना, एक हर घर योगा के तहत पीस महसूस कर रही हूँ मैं खुद। स्ट्रेस को कितनी कामली, कितने स्टेबल माइंडेड से आप उस स्ट्रेस को डील करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जरूरत इस बात की है कि हम नियमित रूप से योग को शामिल करें।
0: कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज वेरी, सबसे कंसिस्टेंसी इज द की।
1: तो इससे पहले की बातचीत को समाप्त करें, आप इस अभियान को लेकर क्या निवेदन करना चाहती हैं?
0: मैं ये कहना चाहूंगी, जिन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में नस दब रही है, घुटनों में तकलीफ है, तो वो कुर्सी में बैठ के भी योगा कर सकते हैं, है करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमारे आसपास का पूरा समाज, हमारा एनवायरमेंट, हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारी सोसाइटी, हमारा भोपाल, हमारा देश, सभी लोग स्वस्थ हों, स्वयं भी कीजिए और आसपास के एनवायरमेंट को भी मोटिवेट कीजिए। आप अकेले स्वस्थ नहीं रहना है, स्वस्थ भारत रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
1: ये तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच।
1: योग को दिनचर्या में नियमित इस्तेमाल करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और अनेक रोगों से मुक्ति पाई है, और इसी खुशी को वे लगातार महसूस भी कर रहे हैं। डॉक्टर कामिनी सोनी की इस चर्चा में भी कुछ यही भावना शामिल थी। तो यदि रहना चाहते हैं निरोग तो अपनाइए योग।

0: नशा हो गया छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का।
1: एक खबर आपको दे दें, गौहर महल में सितारा कला प्रदर्शनी आज से। वीआईपी रोड स्थित गौहर महल में आज से 5 दिवसीय सितारा कला प्रदर्शनी का आगाज होगा। 19 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के 75 कुशल शिल्पी और कारीगर अपनी पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य विशेष रूप से घर से काम करने वाली महिलाओं को अपनी कला को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्रदान करना है। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रियाएं। नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002 इस पते पर अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझावों से भी हमें अवगत करा सकते हैं कि और किस तरह की जानकारियों का समावेश आप कार्यक्रम में चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही आप

0: के विचारों और आपके सुझावों पर आधार बनाकर ही हम अपने कार्यक्रम में कुछ तब्दीली करते हैं, आपके अनुरूप ढालते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों। इसी कामना के साथ आप अनुमति दीजिए अपने मित्र संजय श्रीवास्तव को। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार लिए होंगे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह

0: चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और

0: बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आकडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री

0: क्यों तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं, ये बहुमत की तानाशाही चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a

श्रोताओं, परिवार के मामलों में हमारा देश भी वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ चलता है। भारत में संयुक्त परिवार भी होते हैं। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन पहले जो थे वो संयुक्त परिवार होते थे। घर में सभी लोग साथ मिलजुल कर रहते थे, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ, बहुत सारे लोग होते थे। और बच्चों को भी जो है वो बहुत से हर किसी से संस्कार मिलते थे, अपने जो देश के बारे में है, धरोहर है, उसके बारे में सीख मिलती रहती थी। तो परिवार जो है वो सबका साथ होता है। आज भले ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं कई जगह, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार तो सभी से मिलना बनता है। तो परिवार को साथ लेकर चलें और खुश रहें।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, सुख दुख में देता है ये साथ हर बार, खुशियों का सागर प्यार का किनारा, इसके बिना जीवन अधूरा हमारा।

श्रोताओ, सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। वाकई श्रोताओ, परिवार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो ख़ासकर दादा दादी, नाना नानी, उनकी जो सीख होती हैं, उनके जो संस्कार होते हैं वो बच्चों के बहुत काम आते हैं। और अगर ये बुज़ुर्ग जो हैं घर के कभी रूठ जाएं तो बच्चे उन्हें आराम से, आसानी से मना भी लेते हैं।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सफेरा में अभी ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, क्योंकि अभी वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुलाकात की। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। भोपाल के समन्वय भवन में आज पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। 201 रनों का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, घर परिवार में हमें अपनी लाइफ में हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अगर हम हर काम की एक योजना बनाएंगे, उस काम को उस योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो बहुत सी चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं और बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं। उसी में एक आता है कि हम अपने जो हमारी जो पैसे की अर्निंग है, उसका हम किस तरह से उसको जो है हम अपने योजना बनाकर खर्च करें, तो आगे आने वाले दिनों में भी हम जो है वो अच्छे से अपने सारे खर्चों को पूरा कर सकते हैं और कुछ जो है वो हम बचा भी सकते हैं पैसा। तो थोड़ा सा आप जो है वो योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो इन सब बातों को जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं।

श्रोताओं, कुछ सुझाव जो हम अपना कर जो है वो बचत कर सकते हैं, और बचत में ये सुझाव जो है वो बहुत काम आते हैं। जैसे कि एक दिन जो है वो खर्च मुक्त हम बिता सकते हैं, यानी महीने में कुछ दिन ऐसे तय करें जब केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च करें। इससे अनावश्यक खर्चों की जो है वो हमें समझ आएगी और उनसे हम बच सकते हैं। और हाँ, 24 घंटे का नियम बनाएं। ये मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं कि कोई जैसे विलासिता की वस्तु है उसको खरीदने से पहले 24 घंटे का इंतज़ार करें और सोचें कि क्या ये ज़रूरी है। इससे हम जो आवेग में आके कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं फटाफट से, तो उसमें किए जाने वाले खर्च को हम कम कर सकते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम बचत जो है वो कर सकते हैं।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम से हमें इजाज़त दें। नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

जिस प्रकार अनचाहे युद्ध से सिपाही को प्रशिक्षण मिल जाता है, उसी प्रकार दमन से सत्याग्रही प्रशिक्षित होता है। सत्याग्रहियों को दमन के कारणों का पता लगाना चाहिए। वे पाएंगे कि दमित व्यक्ति किंचित शक्ति प्रदर्शन से ही सरलतापूर्वक डर जाते हैं और पीड़ा भोग तथा आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं होते। यही सत्याग्रह के प्रथम पाठ पढ़ने का समय होता है। जिन्हें सत्याग्रह के अतुल बल का थोड़ा सा भी ज्ञान है, उन्हें अपने पड़ोसियों को कमजोरी तथा लाचारी के साथ नहीं बल्कि बहादुरी के साथ और जानबूझकर दमन को बर्दाश्त करना सिखाना चाहिए। तब भी तैयारी के अनुत्तेजक नियम सत्याग्रह के प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक सत्याग्रह का इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण के आवश्यक चरणों से नहीं गुजरेगा, जो बड़ा जानमारू काम है, तब तक वह प्रबल एवं सक्रिय अहिंसा का विकास नहीं कर सकता। जब तक दुर्भाव है, तब तक सत्याग्रह की स्पष्ट विजय असंभव है। लेकिन जो अपने को दुर्बल समझते हैं, वे प्रेम करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल ये संकल्प करें, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल ईश्वर से डरूंगा, मैं किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखूंगा, मैं किसी का अन्याय सहन नहीं करूंगा, मैं असत्य पर सत्य से विजय प्राप्त करूंगा और असत्य का प्रतिकार करते हुए हर प्रकार की पीड़ा को भोगने के लिए तैयार रहूंगा। सत्याग्रही के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती, न उसकी पीड़ा भोग की क्षमता की कोई सीमा होती है। इसलिए सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि देह को कम महत्व देने के कारण मैं सत्याग्रह में हजारों लोगों को स्वेच्छा से प्राणों का उत्सर्ग करते हुए देखकर प्रसन्न होता हूं। बात यह है कि मैं ये जानता हूं कि दीर्घ काल में सत्याग्रह में प्राणों की हानि न्यूनतम होती है और ये बलिदानियों का उदात्तीकरण तो करती ही है, उनके बलिदान से पृथ्वी का भी उदात्तीकरण होता है। एक बार ये चीज शुरू हो जाए और यदि ये काफी गहन हो तो इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सकता है। आत्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति होने के कारण ये महानतम बल है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

भूल भुलैया थ्री का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी श्रेया घोषाल की, गीत था समीर का और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

मौंजिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, गीत था अमिताभ भट्टाचार्य का और तर्ज बनाई थी सचिन जिगर ने। ये नगमा है स्त्री टू फिल्म से, आवाज़ विशाल मिश्रा की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत सचिन जिगर का।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आइए आपको सुनवाते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का नगमा। आवाजें हैं वरुण जैन और राघव चित्रांगा की, और इस गाने की तर्ज बनाई है सचिन जिगर ने। तो आइए सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को। तज बनाई अनु मलिक ने फिल्म का नाम जानम समझा करो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बादशाह फिल्म का नगमा। आवाज़ है अभिजीत और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक।

बादशाह फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे आवाज थी अभिजीत और अलका याग्निक की। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे अनु मलिक। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए आपको एक सूचना दे दें। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप,

0: एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड न करें। अफवाह फैलाने वाले, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल, मध्य प्रदेश। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया गया, जो 30 मई तक चलेगा। मकान सूचीकरण के लिए जिले में 2985 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें से 2180 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में मकान सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में मकान का सूचीकरण 73% तक पूरा हो चुका है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डीपी वर्मन ने बताया कि नगरपालिका मलाजखंड द्वारा 14 मई को ही मकान सूचीकरण का 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया और बालाघाट जिले में 14 मई तक 73% मकान सूचीकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 1500 रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 36वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई, जिनमें बालाघाट जिले की 3,44,240 लाडली बहनों के खातों में 50,11,37,100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले में मलेरिया उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा रही। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालाघाट में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा पंचायत विभाग के सहयोग से जिले भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से मलेरिया से बचाव, रोकथाम और समय पर उपचार संबंधी जानकारियां आमजनों तक पहुंचाई गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में पिछले दिनों जंगली भैंसे की पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में से 3 मादा और 1 नर शामिल है। जिले में टाइप 1 डायबिटीज, T1D से प्रभावित बच्चों और मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्कान OPD में प्रत्येक शुक्रवार को T1D फॉलो अप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा तथा इंसुलिन उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालित होता है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 8 मई को क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों एवं चिकित्सकों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को निशुल्क ग्लूकोमीटर एवं इंसुलिन का वितरण भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले के कुल 24 न्यायिक खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1085 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 1009 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया।

प्री लिटिगेशन के 835 प्रकरणों में से 780 प्रकरणों का निराकरण कर 1,60,91,443 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं न्यायालयों में लंबित 250 प्रकरणों में 229 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे 1,57,47,930 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 3,18,39,373 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में संचालित आरोह 2026 महाअभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम मैदान, कराटे इंडोर हॉल, म्यूनिसिपल ग्राउंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी फीडर सेंटर सहित जिला एवं विकास खंड मुख्यालयों

0: के दौरान खेल प्रशिक्षण के साथ जुम्बा एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा एफएम रेडियो आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से भी खेल शिविर की गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा है। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार।

0: कुछ धागे उलझे तो कुछ सुलझे होते हैं, परिवार के रिश्ते बस ऐसे ही तो होते हैं। कभी नोक झोंक तो कभी बेपनाह मोहब्बत, इन्हीं रंगों से तो ये रिश्ते सजे होते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम महिला संसार में मैं शशि बंसल अपनी सभी सखियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज शुक्रवार की हर सुहानी भोर हम समर्पित करते हैं अपनी सखियों के नाम हमारे खास सेगमेंट आओ सखी बातें करें के साथ। सखियों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पूरा विश्व मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यह दिवस हर साल 15 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है परिवार, एक ऐसी छांव जहां पहुंचकर हर थकान मिट जाती है, एक ऐसा संबल जो दुनिया की हर चुनौती से लड़ने का साहस देता है, एक ऐसा शब्द जिसे बोलते ही चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। माँ की रसोई की खुशबू, पिता की सीख, दादी की कहानियाँ, भाई बहनों की नोक झोंक और अपनों की चिंता में छिपा प्रेम, इसी का नाम तो परिवार है सखियों। सखियों, हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम का यह विशेष अंग समर्पित है उन रिश्तों के नाम जो हमारे जीवन की नींव है। तो आओ सखी, हम बातें करें रिश्तों की, अपनत्व की, पीढ़ियों की समझ की। तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमसे। हमें फोन करने के लिए नंबर है 07552660902। एक बार पुनः सुन लीजिए सखियों, भोपाल से बाहर की सखियां एसटीडी कोड 0755 डायल करें, इसके बाद 2660902 पर हमें कॉल करें। हम सखियों के फोन कॉल की वेट कर रहे हैं। सखियों, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स की। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है।
1: हेलो सखी,
0: और हम आपसे पुनः कहेंगे, एक बार आप हमारा नंबर पुनः नोट कर लीजिए 07552660902। ये फ़ोन नंबर है और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है सखियों। और परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं होता है सखियों, यह तो एक कविता की तरह है जिसमें एक हर शब्द आत्मीयता से जुड़ा होता है, उसमें छंद होते हैं। वैसे ही परिवार की जो जड़ें होती है ना, जितनी गहरी होती हैं उसकी शाखाएं भी उतनी ही ऊंची जाती हैं। वैसे ही परिवार की जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। तो सखियों, आप जल्दी से हमें कॉल करिए, हम आपके फ़ोन कॉल की वेट कर रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07552660902। सखियाँ, एक बार पुनः हमारा नंबर नोट करें, भोपाल की बाहर की सखियाँ हमें 0755 पर स्टडी कॉल करेंगी, इसके बाद अपना फ़ोन नंबर डायल करेंगी 2660902 पर। चलिए, जब तक सखियों की फ़ोन कॉल हमें नहीं मिलती है, तब तक हम आपको अपनी ही पसंद का एक गीत सुनवा देते हैं। लीजिए आनंद इस गीत का।

0: हमारी सखी हमें कॉल कर रही हैं। सखी का कॉल हम तक पहुंच रहा है, देखें कौन सखी हमसे जुड़ रही हैं।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: सखी हम वेट कर रहे हैं आपके कॉल की। सखियों आप हमें कॉल करने के लिए डायल करें 07552660902 पर। सखियों आपके फ़ोन कॉल की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सखियों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और हम जानते हैं कि परिवार की हमारे उसमें क्या महत्ता रहती है। और परिवार ही तो सखियों एक ऐसी जगह है जहां हम जब बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है। कोई तकलीफ़ आएगी, कुछ दुख आएगा तो परिवार जो है वो हमें सपोर्ट करेगा, हमारा साथ देगा। और परिवार दिवस की बात चली है तो संस्कारों का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सखियों आधुनिकता के इस दौर में हमारे घर की रसोई की खुशबू और बुज़ुर्गों का अनुभव की कहानियां तो हमें मिट्टी से जोड़े रखती ही हैं, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो हमारे पूरे परिवार की नींव होते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पलने में ही दिखाई देते हैं। तो जब बच्चों को बचपन में ही बहुत अच्छे संस्कार जब मिलते हैं तो वह परिवार जो होता है बहुत ही पुष्पित पल्लवित होता है। और उस परिवार की जो है जब कोई प्रशंसा सुनता है तो उसको लगता है कि हाँ परिवार हो तो ऐसा ही हो। और सखियों हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल की। देर किस बात की है, आपके फ़ोन कॉल की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया हमें डायल करें 07552660902 पर। सखियों एक बार नंबर पुनः सुन लीजिए 07552660902 पर आप हमें कॉल करिए और हमसे बातें करिए। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है तो चलिए जब तक सखियों का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है तो हम उन्हें अपनी ही पसंद का एक और गीत उन्हें सुनवा देते हैं। तो सखिए सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: जी नमस्कार सखी, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: आपका नाम बताइए।
1: नंदिनी
0: हेलो,
1: तिवारी बात कर रही
0: लगता है हमारा सखी से संपर्क टूट गया है। चलिए सखियों,
1: मैं।
0: हम फिर से आपके कॉल की वेट कर रहे हैं। आप हमसे बातें करने के लिए कॉल करिएगा 0755-2660902 पर। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और हम चाहते हैं आज के दिन हम आपसे परिवार पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। तो हम वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल की। सखियों, इंतज़ार किस बात का है? आप हमें फ़ोन मिलाइए और डायल करिए 0755-2660902 पर। लगता है हमारी सखी हमसे जुड़ गई हैं। हेलो,
2: आवाज आ रही है आपको मैडम?
0: हेलो सखी,
2: हेलो। अरे
0: हेलो
2: आपका
0: सखी,
2: प्रोग्राम होस्ट करना नहीं आ रहा क्या
0: हम
2: यार?
0: प्रतीक्षा कर रहे हैं सखी
2: हाँ,
0: आपके फोन की।
2: बार बार पागल बना रही
0: हेलो,
2: हूँ कॉल रिसीव करके।
0: लगता है संपर्क फिर टूट गया है। हेलो, शायद एक सखी हमसे जुड़ रही हैं।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो, आवाज आ रही?
0: हेलो सखी,
2: हेलो, अरे आवाज आ रही सखी? अबे हद हो गई रे, चलो भाई किला जवान नहीं आ रही।

हेलो सखी, हमें डायल करें 0752660902 पर। हेलो, चलिए जब तक सखियों का फ़ोन कॉल आता है हम उन्हें एक बार फिर अपनी पसंद का गीत सुनवा देते हैं। तो सखी लीजिए आनंद इस गीत का।

आओ सखी बातें करें, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सखियों के फोन कॉल की। एसटीडी कोड है 0755, नंबर डायल करें 2660902। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और बहुत ही खूबसूरत सी चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हंसते हुए चेहरों का मेला है परिवार, एक दूसरे के सपनों का सहारा है परिवार, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता है, मुश्किलों में हिम्मत देने वाला है परिवार। सच सखियों, परिवार ऐसा ही होता है। जब हम परिवार के साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही हिम्मत आ जाती है। जब कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो जब हम परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठते हैं, माँ की गोद में सिर रखते हैं, पिता का संबल भरा हाथ हमारे सिर पर जब फिरता है सखियों, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे दुख सारी तकलीफें मिट गई हों। सच सखियों, परिवार ऐसा ही तो होता है। तो सखियों, देर किस बात की, जब तक आप फ़ोन कॉल हमें कर रही हैं तब तक हम आपको एक बार फिर अपनी ही पसंद का गीत सुनवा देते हैं। तो आइए लीजिए आनंद इस गीत का।

खुशियों का हर लम्हा पास होता है जब परिवार का हर सदस्य साथ होता है। मिलकर बांटते हैं हर गम और हर खुशी, तभी तो ये रिश्ता सबसे खास होता है। जी हाँ सखियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है आज और हम आपको पुनः बधाइयाँ देते हैं। आज हमारी सखियों से तो बातें नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं सखियों, इस बार हमने आपको अपने पसंद के गीत सुनवा दिए हैं। तो सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ और अपनी सखी शशि बंसल को दीजिए अनुमति इन पंक्तियों के साथ। बिछड़ रहे हैं आज इस उम्मीद के साथ कि यादों का कारवां फिर सजेगा, फिर होगी गुफ्तगू आपसे और खुशियों का ये आंगन फिर महकेगा।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम महिला संसार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन। राग है यामिनी बिलावल।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आपने सुना पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन। राग था यामिनी बिलावल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने प्रवास के दौरान मेट्रो ट्रेन से सफर कर मितव्ययिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। भोपाल के समन्वय भवन में आज पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ करेंगी। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में सबसे अधिक तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की है और राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन प्रतिष्ठित FII महिला AP विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 22 से 24 मई तक फ्रांस में आयोजित की जाएगी।

0: सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड लगा सकते हैं 0755। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, यदि आपका फोन कार्यक्रम में हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया ना लगाएं और हमारे नए श्रोताओं को मौका दें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: सर जी नमस्कार।
2: नमस्कार, क्या हाल है?
3: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। महीने साल फिर गए ऐसा लग रहा है मुझे।
2: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, वो क्या होता है, दिल से दिल की राह होती है ना।
3: जी जी
2: जी जी।
3: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा।
2: मांगीलाल जी, क्या हाल चाल है?
3: हाल चाल आपकी दुआ से बढ़िया है और सब आनंद है। और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया। सर जी, फिल्म का नाम रहेगा शहनाई।
2: शहनाई
3: जी।
2: अरे वाह, क्या वाली पुरानी वाली शहनाई। चलिए, तो आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम
3: कुछ मित्रों को याद कर सकते
2: हैं? हाँ बिल्कुल, कर लीजिए।
3: दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, और फूलचंद पाल जी है मनकारी से, प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी है, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं। इन सभी को सर जी यह गाना डेडिकेट रहे।
4: न झटको जुल्फ से पा

0: कार्यक्रम में फोन करेंगी, सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम। जीना
0: वालेकुम सलाम।
1: भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से। जी
0: इंदौर से आप
1: जीना भी मंसूरी,
0: नाम एक बार फिर बता दीजिए।
1: हसीना भी मंसूरी, पालदाना का
0: अच्छा
1: इंदौर।
0: हसीना भी, क्या बात है हसीना जी। और सुनाइए क्या हाल है?
1: जावेद जी आप कैसे हो?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और घर में कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? गर्मी का असर कैसा है? गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत सारे
1: गर्मी गर्मी 2 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रही है।
0: हाँ। तो
1: आप क्या भी पढ़ रहे हो? क्योंकि आप अभी पास में ही हो हमारे, कोई ज्यादा दूर नहीं
0: हाँ,
1: है।
0: हम लोग जरा सूरज के करीब हैं थोड़े से।
1: जी।
0: अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम वक्त की आवाज और गाने भी बोल हैं।

0: कार्यक्रम फोन करें की सुने में आपका स्वागत है। आपने कॉल किया है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मैं शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ नीमच से।
0: अच्छा शिवानी, कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: सर मूवी का नाम है जीने की रहा, गाने के बोले आने से उसके आए बाहर।
0: नीमच में गर्मी वगैरह कैसी पड़ रही है?
1: सर बहुत गर्मी है यहाँ तो।
0: और ये है कि इतनी गर्मी में आप कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं?
1: जीने की रहा।
0: नहीं नहीं गाने के बोल क्या हैं?
1: गाने के बोल हैं आने से उसके आए बाहर।
0: हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में किसी के आने से
1: बारिश हो जाए सर तो अच्छा है।
0: अच्छा चलिए सही बात है
1: सर, गर्मी तो बहुत है और यहाँ तो लाइटें भी चली गई है।
0: अभी चली गई या बहुत देर से गई है?
1: नहीं सर सुबह से गई है यहाँ तो आज।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो गर्मी के बगैर कैसा लगता है, मजा आता है गर्मी
1: नहीं
0: का?
1: सर मजा तो नहीं ना आता है।
0: नहीं तो देखिए मजा तो ये देखिए ये तो अगर पहले बहुत पहले की बात करें तो लाइट नहीं हुआ करती तो भी लोग एंजॉय किया करते थे।
1: हाँ सर किया करते थे, लेकिन आज के जनरेशन में सर लाइट नहीं हो तो क्या एंजॉय, क्योंकि फोन वगैरह चार्ज नहीं देंगे तो फिर
0: हाँ फोन के बिना तो आजकल जीवन अधूरा है,
1: जिंदगी नहीं अभी तो।
0: ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, तो आपने गाना भी बता दिया और सारी चीजें बता दी, तो हम अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको गाना सुनवा दें।
1: जी सर थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए सबसे पहले तो।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: इंदौर से तो बोल रही हैं आप, नाम भी तो होगा आपका कुछ।
1: जी है ना, जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से।
0: जी जीनत परवीन। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: गाना प्रेम रोग का।
0: प्रेम रोग का कौन सा? मैं हूँ प्रेम रोगी
1: जी। कुछ नहीं जब रोग ये लग जाता।
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है ये, सुरेश वाडकर की आवाज है
1: जी।
0: रेडियो सुनती हैं आप?
1: रेडियो चलते ही रहता है।
0: अच्छा रेडियो चलता रहता है, देखिए चलते रहता है तो इस वजह से आप पूरे प्रोग्राम सुनती होंगी। तो आकाशवाणी इंदौर सुनती हैं या आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनती हैं या आकाशवाणी भोपाल सुनती हैं, क्या सुनती हैं आप?
1: सब सब सुनती हूँ, सब पे लगा लेती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
1: इंदौर भोपाल लखनऊ।
0: नई तकनीक का यही फायदा है कि हम घर बैठकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है प्रेम साहब, क्या बात है
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ और आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपसे बात करता रहूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, हमारे भी दिल चाह रहा है कि हम आपसे बात करते रहें।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।
0: कुली नंबर
1: और
0: वन
1: हाँ जी, उसका है ना वो जब दिल न लगे।

0: दिलदार हमारी गली आ जाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, जब दिल ना लगे। हाँ, तो अभी आपका दिल नहीं लग रहा।
0: जी, हमारा दिल तो हमेशा लगा रहता है, आकाशवाणी सुनते रहते हैं। और जब सबसे ज्यादा हमें लोकप्रिय कार्यक्रम लगता है आकाशवाणी भोपाल का, कोई मतलब फोन करेगी सुने।
1: अभी ये आकाशवाणी भोपाल नहीं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: जी
1: अच्छा, और बताएं बाकी कैसे, क्या हाल चाल है वहाँ आपके उज्जैन में, महाकाल की नगरी है, अभी
0: जी
1: गर्मियों के
0: बिल्कुल,
1: क्या हाल
0: सभी
1: है?
0: अच्छे हैं। अभी गर्मी काफी हो गई है और अभी 2028 में सिंहस्थ लगेगा ना,
1: हाँ,
0: तो उसकी काफी तैयारियां हो चुकी हैं। रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, मंदिर के आसपास में काफी जगह कर दी गई है, और मतलब एरोप्लेन की भी व्यवस्था कर दी गई है, और रेलवे स्टेशन पे भी मतलब है ना, ऐसे कैमरे लगा दिए गए हैं, और ताकि यात्रियों को, आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी
0: जी
1: बात है। तो आपने गाना भी बता दिया मुझे, और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए
0: जी
1: भी।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ, शहडोल एमपी से।
0: मोहम्मद सलमान। मुझे एकदम से लगा कि सलमान खान तो नहीं बोल रहे।
1: अरे नहीं सर, और सुना ये कैसे हैं सर आप?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जगह का नाम क्या बताया?
1: सर हम शहडोल से बोल रहे हैं।
0: तो शहडोल का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि शहडोल?
1: शहडोल शहडोल कहे तो सर क्या कहते हैं तो फिर क्या बहुत क्या कर, पुराना शहर है सर और इसका नाम शुरू से यही है सर।
0: अच्छा यही है तो, मतलब अपन का कोई योगदान नहीं है, पहले ही रख दिया इसका नाम।
1: जी जी जी
0: चलो ठीक है, मैंने कहा शायद कुछ इतिहास होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना।
1: हाँ
0: चलिए अच्छा बताइए मुझे कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे को सर गाना सुनवा दीजिए सर। फिल्म का नाम है अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म का नाम है सर फिर क्या कर, कुली।
0: कुली। क्या बात है कुली।
1: और गाने के बोल हैं क्या मुबारक हो तुमको ये हज का महीना।
0: अरे क्या बात है।
1: तो हज में क्या कहते अम्मी और अब्बू हमारे गए हैं सर, तो फिर क्या कहते हैं तो फिर ये गाना सुनना चाहते हैं सर।
0: अरे वाह क्या बात है। और देखिए कि हज पे गए हैं और आपको,
1: जी
0: और आपका फोन भी लग गया है, तो मतलब ये कि जा चुके हैं या जाने वाले हैं?
1: तो फिर क्या कहते जा चुके हैं सर,
0: अच्छा
1: हज में
0: जा
1: जा
0: चुके।
1: चुके हैं।
0: अच्छा चलिए, तो आप सुनिएगा गाना और अपने दोस्तों को भी सुनवाइएगा ये गाना।
1: जी सर
0: आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर शुक्रिया सर।

0: कार्यक्रम में फोन करेंगी। सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते।
1: बोबी रायकवार बात कर रहा हूँ सर, कोटा से।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: सब बढ़िया सर, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: क्या बात कर रहे हो।
1: सर राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: राजस्थान, हाँ वैसे भी क्या है, राजस्थान रेगिस्तान लगा हुआ है
1: हाँ
0: वहाँ। हाँ जी, तो गर्मी तो होगी। और अभी टेम्परेचर कितना होगा?
1: सर, यहाँ पर 42 है अभी तो, और दिन में और बढ़ जाएगा सर।
0: अच्छा, दिन में और बढ़ जाएगा।
1: हाँ सर,
0: ओहो, तो घर से
1: पहले
0: बाहर
1: सही हो
0: निकलना
1: रहा
0: तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना।
1: है। हाँ सर, बहुत।
0: तो फिर क्या करते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है? तो घर में रहते हैं।
1: ज्यादा गर्मी होती है तो फिर कूलर चलाते हैं।
0: अच्छा, कूलर चला लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है। अच्छा बताओ, कौन सा गाना सुनोगे?
1: मैंने प्यार किया का कहे तो उसे सजना।
0: अच्छा, मैंने प्यार किया है, कुछ इसमें यही गाने क्यों पसंद है?
1: सर पुराने गाने ही पसंद है।
0: अच्छा, तो कहो क्या गाने के बोल क्या हैं?
1: कहे तो उसे सजना।
0: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: फोन करेंगे इस समय में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ।
0: जितेंद्र पंडोले। जितेंद्र जी
1: जी
0: कहाँ
1: सर,
0: से
1: सर आप
0: बोल रहे हैं?
1: मतदान जिला छिंदवाड़ा से। जी
0: छिंदवाड़ा से।
1: सर,
0: बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: सर मैं अभी फिलहाल तो PhD कर रहा हूँ,
0: अरे वाह,
1: रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ सर UTT डिपार्टमेंट में।
0: अच्छा, मतलब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है।
1: जी जी जी जी सर,
0: और यही बात होती है कि देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कुछ काम शुरू कर देते हैं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: लोग
1: जी
0: ऐसे
1: सर,
0: होते हैं कि पढ़ाई के समय कुछ नहीं करते, फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल होता है। तो मेरा मानना है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब से आप अपना कुछ भी काम छोटा मोटा शुरू कर दीजिए, और जब आपकी पढ़ाई
1: जी
0: होगी तब तक आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा,
1: जी
0: ये तो
1: जी
0: हो
1: जी सर,
0: गई वैसी बात। आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगा, मूवी का नाम तो पता नहीं
0: हाँ,
1: बट गाना है
0: गाना याद नहीं आ
1: ये,
0: रहा।
1: हाँ ये रात भीगी भीगी,
0: अच्छा, ये रात भीगी भीगी।
1: आपकी
0: हाँ
1: आवाज भी बहुत मधुर लगती है जावेद सर, आपको मैं तो हरदम सुनते रहता हूँ जब
0: क्या
1: जब भी
0: बात है, क्या
1: आपकी मूवी
0: बात है।
1: लगती होगी।
0: हाँ, तो हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारे श्रोताओं का फ़ोन आता है ना, हमें ऐसा लगता है
1: जी
0: कि हम इनसे बात करते रहें, लेकिन समय की कुछ पाबंदी होती है कि हम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते।
1: जी जी जी
0: चलिए,
1: सर,
0: मगर आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, आप ज़रूर सुनिएगा।
1: जी जी सर, धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बहुत ही अच्छे हाल समाचार सर, आपकी आवाजें सुनते हैं। नमस्कार, भोपाल में इतनी ऊर्जा का संचार आप करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा मन प्रसन्न हो जाता है सर।
0: जिस तरह से आपको खुशी होती है ना, उससे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे श्रोताओं से हमारी बात हो रही है, क्योंकि हम आपको देख नहीं सकते लेकिन उसके बाद में भी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम इंजॉय करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं।
1: सर, सुकून भरे पल निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से, जिस तरीके से आकाशवाणी भोपाल, नमस्कार भोपाल, गीत सागर और फोन इन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लेकर के आता है, जिसमें हमें ऊर्जा का संचार करवाता है, साथ ही ज्ञान की जो ताकत होती है उसे भी प्रवाहित करवाता है सर। ऐसे कार्यक्रमों को सुनना और गुनना बहुत ही अच्छा लगता है सर।
0: चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी सर, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है सर, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।
0: पाकीज़ा, चलो दिलदार चलो।
1: नहीं सर, इसका बहुत ही प्यारा सा गाना है सर।
0: कौन सा बताओ?

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच वॉशिंगटन में तीसरे दौर की शांतिवार्ता जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति की खबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से चुनाव सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। फर्जी विश्वविद्यालयों और अवैध शिक्षण संस्थानों के जाल से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्जैन से भोपाल अपने काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार निरस्त कर दिए गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी शर्मा वर्मा,

गणेश मिस्त्री। इसी गीत को सुनना चाहा है अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवा पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सभी ने सुनना चाहा है सड़क फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपो, ऋषिका और रॉबिन। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदी खान, अस्मा, सालिया, शुएब, मुस्तबा, रऊफ और शहीद खान। आप सभी ने सुनना चाहा है अजनबी फिल्म का नगमा, आवाज़ें कुमार सानू और सुनिधि चौहान की।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार की फिल्म का नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। सुनने की ख्वाहिशमंद अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। धनतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झाविंद्र कुमार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता और ताशु, पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिलाषा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, तर्ज बनाई है आरजी परमन ने।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ग्राम सभा प्रतिदिन शाम 7:21 पर खेती किसानी की समसामयिक जानकारियाँ, कृषि विशेषज्ञों से सलाह, बुंदेली समाचार, लोकगीत और मौसम की जानकारी सुनते रहिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का दूसरा भाग।

0: सुधीजन को मेरा बारंबार प्रणाम। पंचतंत्र की कथाएं सचमुच मोहित करने वाली होती हैं। पिछली कथा में मैंने बताया दमनक ने संजीवक से वचन लिया कि राजा से मित्रता करके वो दमनक को भूल ना जाए, नहीं तो दंतिल ने गौरव को अपमानित करके जो भूल की थी वही हालत संजीवक की होगी। और दमनक ने संजीवक को दंतिल की कथा कुछ यूं सुनाई।
1: वर्धमान नाम का एक नगर था, वहाँ एक दंतिल नामक आभूषणों का व्यापारी था। वो राजा का विशेष कृपा पात्र था। कहा जाता था उसके समान चतुर व्यक्ति शहर में नहीं था। एक बार की बात है, गौरम नामक व्यक्ति जो राज दरबार में सेवक था वो दंतिल से अपमानित हो गया।
2: समझता क्या है वो दंतिल? महाराज का बड़ा मुंह चढ़ा है ना, सबके सामने मुझे अपमानित करके उसने अच्छा नहीं किया। इस भांडपति दंतिल को राजा की कृपा से वंचित ना करा दूं तो मेरा नाम भी गौरव में नहीं। परंतु कैसे उसकी कुछ भी क्षति करना मेरे बस में नहीं है। क्या करूं क्या?
3: क्या हुआ? इतनी देर रात किस पर इतने क्रोधित हो रहे हो? आज तक तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलते मैंने कभी नहीं सुना। देख रही हूँ कल रात से ही परेशान से दिखाई दे रहे हो।
2: नहीं भगवान, जब दिल दुखता है तभी हाय निकलती है। दंतिल आजकल आसमान में उड़ने लगा है।
3: दंतिल? कौन दंतिल? वही व्यवसायी।
2: अरे छोड़ो, बड़ा आया व्यवसायी, अपने आप को महाराज का सगा वाला समझने लगा है।
3: क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने?
2: ये कुछ मत पूछो। मैं उस रात को उस दंतिल की बेटी की विवाह समारोह में गया था ना।
3: हाँ?
2: पूरा राज परिवार भी वहाँ पर उपस्थित था। मैं महाराज के साथ ही था। मुझे वहाँ पर महाराज के पास बैठा देखकर उसने मुझे बहुत अपमानित किया और धक्के देकर विवाह स्थल से निकाल दिया।
3: क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। परंतु आप शांत रहिए, अपने जीव को दुखाइए मत। शुभ कार्य में किसी निर्धन का श्राप लेकर वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुनिए, चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है।
2: नींद किसे आएगी? मेरे तो सीने में आग जल रही है। जब तक उससे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ, एक ही उपाय है। अपने आप को महाराज के बहुत निकट समझता है ना, क्यों ना उसके विरुद्ध महाराज के कान भर दूं। फिर जो करना है वो महाराज स्वयं ही करेंगे।
4: अरे गौरव
5: जी,
4: आज सूर्य उदय के पूर्व ही तुम्हारा काम शुरू हो गया और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई।
5: क्या करूं महाराज, एक घटना देखकर रात भर नींद ही नहीं आई
4: है?
5: इस कारण जल्दी ही काम पर आ गया।
4: ऐसी कौन सी घटना देख ली तुमने?
5: कैसे कहूं महाराज, मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूं।
4: निर्भय होकर कहो।
5: क्षमा चाहता हूं महाराज, उस दंतिल की

0: धृष्टता तो देखिए, उसका साहस। नाना महाराज, मैं ना कह पाऊंगा।
1: देखो, जो बात शुरू की है उसे पूरा करो, मेरा आदेश है।
0: उसका साहस इतना बढ़ गया है कि वो महारानी का आलिंगन करने लगा।
1: क्या बक रहे हो गोरम, होश में तो हो। महारानी का आलिंगन, दंतिल।
0: अपराध क्षमा करे महाराज। जुआ खेलते हुए रात नशे में मुझे नींद नहीं आई। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा, हो सकता है उसी का असर हो।
1: दोष, बिना विचारे इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी यहां से निकल जाओ।
0: जो आ गया महाराज, मैं चला।
1: कहीं ऐसा तो नहीं ये गोरम सत ही कह रहा हो? दंतिल के साथ साथ ये भी तो अंतापुर में बेरोक टोक जाता था। महारानी की दंतिल के प्रति किंचित आ सकती हो? तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। नहीं, आज के बाद दंतिल का राजभवन में प्रवेश बंद बंद बंद बंद बंद बंद।
2: दंतिल जी, आपका राजभवन में प्रवेश निषेध हो गया है।
3: अरे, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं महाराज का विशेष कृपा पात्र हूँ?
2: परंतु महाराज ने स्वयं ही ये आदेश दिया है।
3: हूँ? मैंने तो सपने में भी राजा अथवा उनके किसी प्रियजन का अनिष्ट नहीं किया, फिर महाराज मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गए?
0: अरे भाई द्वारपाल
2: जी,
0: सावधान रहना। ये श्रीमान दंतिल जी हैं, राजा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हें राजा की ओर से पुरस्कार अथवा दंड पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें रोकने से आप लोग भी मेरी तरह अपमानित हो सकते हैं।
3: लगता है ये सारी चाल गोरम्भ की ही है। अरे भाई गोरम्भ, मुझे अपने किए पर पश्चाताप है। आप कृपया उस अपमान को भूलकर मुझे क्षमा कर दें।
0: आपने मुझसे क्षमा मांगकर मेरे मन का कलुष मिटा दिया। आपने सबके सामने क्षमा मांगकर मुझे बहुत सम्मानित किया है। अब आप मेरे बुद्धि कौशल एवं राजा के अनुग्रह को देखिए।
3: आप धन्य हैं।
0: महाराज की जय हो। आप सर्वज्ञ हैं, परंतु शौच स्नान आदि क्रिया के समय ककड़ी खाना उचित नहीं है महाराज।
1: गोरम, कैसी अनर्गल बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है?
0: देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूँ। नींद के नशे में मेरे मुख से कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें महाराज।
1: मैंने जन्म से आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया। इसने अर्ध निद्रा में जिस प्रकार की ये बात कही, संभवतः दंतिल की कहानी भी झूठी हो। मैंने व्यर्थ ही उसे अपमानित किया। मैं आज ही उसे बुलाकर उचित सम्मान देकर पूर्ववत नियुक्त कर दूंगा।
4: इस कहानी को सुनाकर दमनक ने संजीवक को बता दिया कि जो गर्व के कारण राजभृत्यों का अनादर करता है उसकी हालत दंतिल जैसी होती है। संजीवक से वचन लेकर उसने पिंगलक से संजीवक की मित्रता करवा दी। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि पिंगलक अब पूरी तरह संजीवक के वश में हो गया। संजीवक और पिंगलक की मित्रता देखकर पूरी जानवरों की सेना दुखी हो गई। अब न राजा उनका ध्यान रखते थे, न ही भोजन की व्यवस्था करते। सारा दिन केवल संजीवक के साथ विचरण करते रहते। भोजन के अभाव में सभी की स्थिति दयनीय हो गई थी।
5: ऐसे कैसे जीवन कटेगा दमनक? सिंहराज तो अपना अरण्य धन तक भूल गए हैं।

0: कारण सभी की दशा दयनीय हो गई है।
1: हाँ करकट, कहते हैं ना, सूखा पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो, पक्षी दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार सेवक कितने दिनों तक बिना जीविका के प्रतीक्षा करते रहेंगे।
0: मुझे तो लगता है हमारा मंत्री पद पुनः पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है?
1: अरे करकट, राजा की दृष्टि में इस समय हम नगण्य हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दें।
0: दमनाक, ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है।
1: आपका कथन ठीक है, ये सब मेरा ही दोष है। मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूँ। जैसे आषाढ़ भूत कलिका और जुलाहे की स्त्री।
0: कैसे?
1: सुनो, किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे से उसके पास ढेर सारा धन एकत्र हो गया।
2: इस धन की पोटली को इधर उधर रखना ठीक नहीं, मैं इसे अपने कक्ष में ही रखता हूं। उफ, ये अच्छा जंजाल मेरे सिर पर आ गया। वैसे भी धन सदैव मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही होता है। कौन कौन है वहां? अंदर आओ भाई।
3: प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम आषाढ़ भूति है। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें।
2: आयुष्मान भाव,
3: यह संसार आसार है, मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें भगवान।
2: वत्स, तुम युवावस्था में ही जीवन से विरक्त हो गए हो, तुम धन्य हो। मैं दीक्षा रूपी अनुग्रह तो कर ही दूंगा, परंतु रात्रि के समय तुम मठ में प्रवेश नहीं करना। द्वार पर बनी घास की कुटिया में शयन करना।
3: आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है भगवान।
2: वत्स, आषाढ़ भूत, पूजा की तैयारी हो गई?
3: जी गुरुदेव, आप पूजन प्रारंभ करें।
2: ओम,
3: पता नहीं कितने दिन इस बुड्ढे की सेवा करना पड़ेगी। मन में आता है किसी दिन इसकी हत्या कर डालूं और धन लेकर चंपत हो जाऊं।
2: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्।

0: एक दिन पंडित देव शर्मा ने आषाढ़ भूति से कहा कि उनका एक शिष्य उन्हें निमंत्रण देकर गया था कि उसके घर गृह प्रवेश में आना है। वो चाहते हैं कि आषाढ़ भूति भी उनके साथ चले। मार्ग में
1: दिन चढ़ाया, वत्स, मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर आता हूँ, थक गया हूँ। सामने ही जलाशय है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मेरे लौटने तक मेरी इस पोटली की रक्षा करो।
2: जो आज्ञा गुरुदेव।
1: ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः।
2: इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। आप स्नान कीजिए और मैं तो चला ये पोटली लेकर।
1: वत्स, अब तुम जाकर। वत्स, वत्स कहाँ हो? आषाढ़ भूति

0: अच्छा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो भाग नहीं सकता। हाय हाय मैं लूट गया। अरे आषाढ़ भूति मुझे लूट कर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया।
1: और इस प्रकार विलाप करते हुए देव शर्मा आषाढ़ भूत के पद चिन्हों को ढूंढते हुए सूर्यास्त के समय एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक जुलाहा अपनी स्त्री के साथ समीप के नगर में जा रहा था। सूर्यास्त काल में द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करने वाला देवत्व को प्राप्त करता है। ऐसा सोचकर स्त्री को आतिथ्य के लिए छोड़कर वो जुलाहा स्वयं चला गया। परंतु पति के जाते ही वो सज धज कर अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने चल पड़ी। रास्ते में पति को देखकर घर वापस आ गई। परंतु उसके पति को संदेह हो गया।
2: अरे पापिन, तू आभूषणों से लदकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी? तेरे बारे में बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं मैं। आज अपनी आंखों से देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। ये ले, ये ले, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुझे इस खंबे से बांध दूंगा। अब भाग तू।
3: अरे ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? देवदत्त के पास कैसे जाऊं? ये कलिका तो इधर ही आ रही है। सखी कलिका, कलिका सुनो।
4: अरे सखी, अरे देवदत्त वहां तुम्हारी बाट जो रहा है, तुरंत जाओ।
3: लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो, तुम जाकर उससे कह देना कि आज रात्रि में उससे मेरी भेंट होना संभव नहीं है।
4: नहीं, ये उचित नहीं। तुमने उसे वचन दिया था। अरे वो बाट जो रहा है।
3: अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ सखी, कि इस कठिन बंधन में रहकर मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ? और ये मेरा पापी पति भी तो यहीं पड़ा है।
4: अरे सखी, शराब के नशे में बेहोश ये सूर्योदय के बाद ही जागेगा। ऐसा करो, मुझे अपने स्थान पर बांधकर तुरंत ही देवदत्त से मिलाओ।
3: हाँ हाँ हाँ सखी, यही ठीक रहेगा। तुम जो कहती हो मैं वही करूँगी।
4: रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। सखी को अब तक आ जाना चाहिए था। अरे अरे कहीं ये नींद से जाग न जाए।
2: अरे अरे पापिष्ठा कुलटा, यदि आज से ही तू पर पुरुष गमन नहीं छोड़ते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल।
3: कुछ बोलू तो ये मेरी आवाज पहचान लेगा। मैं चुप ही रहूंगी, मैं चुप ही।
2: अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? बोल, तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी। रुक रुक, अबे रुक, मैं तेरे शस्त्र से तेरे नाक काट दूंगा। अबे ले, ले, ले।

0: देव शर्मा तो इस पूरी घटना को देख रहा था। धन चोरी होने के कारण उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुलाहे की पत्नी की उल्टा प्रवृत्ति को देख रहा था। प्रेमी से मिलने के बाद रात के अंतिम प्रहर में जब जुलाहे की पत्नी घर वापस आई तब
1: सखी कलिका तुम

0: कुशल तो हो ना, कहीं मेरे जाने के बाद ये पापी उठा तो नहीं था?
1: तुम आ गई, नासिका को छोड़कर बाकी मैं सकुशल हूँ।
0: क्या
1: तुम शीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जिससे इस पापात्मा के देखने के पूर्व ही मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे पति भी लौटते होंगे, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा।
0: हाँ हाँ हाँ सखी अवश्य, परंतु सखी तुम अपने पति से नासिका के घाव के विषय में क्या कहोगी?
1: देखती हूँ कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा, अब देर मत करो, आओ आओ मैं तुम्हें बांधूं।
0: हाँ, लो बांधो।
2: क्यों पर पुरुष गामने, अब भी कुछ बोलेगी या नहीं? आए? नाक तो मैंने काट दी, क्या कान भी काट कर और कठोर दंड दूं? बोल।
3: अरे मूर्ख पापी, मेरे जैसी सती नारी को कौन अपमानित कर सकता है? बड़े आए मुझ पर संदेह करने वाले, समस्त लोकपाल मेरी बात ध्यान से सुने। यदि मेरे मन में भी सतीत्व है और मैंने कभी स्वप्न में भी पराए मर्द की कामना नहीं की है, तो देवतागण मेरी नासिका को पहले जैसा अक्षत बना दें। और यदि मेरे कहे वचन में तनिक भी मिथ्या हो तो ईश्वर मुझे जलाकर राख बना दें।
2: अरे जा जा, बड़ी देखिए तेरे जैसी सती, जरा चेहरे से हाथ तो हटा।
3: देख दुष्ट, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पूर्ववत ठीक हो गई है।
2: ये कैसे हो सकता है, नीचे खून अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने खुद प्रहार किया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? तो क्या मेरी पत्नी सचमुच निर्दोष है? मैंने व्यर्थ ही पाप मोल लिया? गांव वालों की बातों में आकर मैंने सीता जैसी पत्नी पर संदेह करके घोर अन्याय किया है। देवी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो। ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे, ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे। बैठो बैठो।
0: हाँ अब ठीक है।
4: हे प्रभु, ये स्त्रियां तो असुरों की भांति माया जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सन्यासी हूं, संसार के इस माया जाल से दूर। उफ।
1: मुझे तुरंत ही घर पहुंचना होगा, मेरी नासिका से जो खून बह रहा है उसका क्या करूं? अभी से मेरे स्वामी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, सखी को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गई। लो घर आ गया, अब क्या करूं?
5: प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय सुनो, आज बड़ा विलंब हो गया है, सूरज चढ़ाया है, मैं वो मुझे राज दरबार में बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए शीघ्र पहुंचना है। तुम एक काम करो, मेरे औजारों की पेटी जल्दी दे जाओ तो मैं चला जाऊं जल्दी।
1: ये मौका अच्छा है, मैं धारदार उस तरह उसकी ओर जोर से फेंकती हूँ, अगर वो मेरी ओर उसे वापस फेंक देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये ले पकड़।
5: अरे अरे, ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इस कारण तेरा साहस अत्यधिक बढ़ गया है, अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक है ठीक है, तुझे उचित दंड देना होगा।
1: नहीं, नहीं।
5: ले ये उस्तरा।
6: मैं मर गई, कोई है? इस पापी ने बिना किसी

0: न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
1: श्रीमान, इस नापित ने बिना किसी अपराध के ही अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया है, अतः इसे उचित दंड दें।
0: नापित, तुमने अपनी पत्नी पर प्रहार क्यों किया? क्या इसने परपुरुष गमन किया था?

0: या चोरी की थी, इसका अपराध क्या है? बोलो। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मौन तुम्हें अपराधी साबित करता है। सिपाहियों का कथन भी ठीक जान पड़ता है। तुम दोषी हो। इस निर्दोष स्त्री पर प्रहार करके तुमने घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा।
1: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
0: कौन हो तुम जो इस समय अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हो?
1: मैं सन्यासी हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। ये बेचारा नापित अन्यायपूर्वक मारा जा रहा है। ये निरपराध है। मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुने।
2: और फिर देव शर्मा ने सविस्तार दोनों वृत्तांत को सुनाया। उसकी बात को सुनकर न्यायपाल ने नापित को मुक्त कर दिया और कलिका को दंड स्वरूप कान काटने का आदेश दिया। देव शर्मा ये सब देखकर अपने धन की चोरी को भूलकर पुनः मठ में लौट गया। दमनक की ये कथा सुनकर करकट संतुष्ट हुआ या नहीं, या दमनक को कोई और कथा सुनानी पड़ी, ये जानने के लिए कीजिए अगले सप्ताह का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही थी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रदेश में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के चयनित 4,000 प्रतिभागियों को आज से जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूं आपके साथ

0: आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, परिवार किसी भी सामाजिक ढांचे की रीढ़ की तरह काम करता है। दुनिया के हर देश में परिवार होता है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हर शख्स के लिए परिवार अहम भूमिका निभाता है। परिवार हर किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। बहनों, परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला किया। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व परिवार दिवस को मनाने की शुरुआत करने के पीछे की वजह दुनिया भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना है। भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने और अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। विश्व परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण है। ये विषय परिवारों पर बढ़ती असमानता के प्रभाव, बाल गरीबी को कम करने और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत निवेश पर केंद्रित है। मैंने खुशहाल और स्वस्थ पारिवारिक माहौल बनाने के 4 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। साथ में भोजन करना, सक्रिय रहना, चर्चा करना और पति पत्नी के रूप में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। बहनों, परिवार सर्वोपरि है। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समुदायों की नींव होते हैं। दिन हो या रात, चाहे धूप हो या बरसात, चाहे आए विपत्ति हजार, परिवार ही साथ देता है हर बार। हाथों की उंगलियों सा तकरार, मिल जाए तो ताकत अपार, खुशियों से भर जाता दिन हर बार, साथ मिल जाए जब पूरा परिवार। जी हाँ बहनों, तो अपने परिवार पर गर्व करें, समय दें और उसे व्यवस्थित रखें और एक दूसरे को एक दूसरे के प्यार का, सम्मान का और अहमियत का एहसास कराते रहें, कुछ इस तरह से।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में फिल्म हम से ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मैनो हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आते हैं तो वो कविता का रूप ले लेते हैं। कविताएं समाज का और हमारी आत्मा का दर्पण होती हैं। जब कोई कवि या कवियत्री कविताएं लिखता है तो उन कविताओं में समाज में घटित हो रही कई सारी घटनाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी परिकल्पनाएं और उसके सपने उस कविता को निखार देते हैं। और जब ये कविताएं हम आपको सुनवाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेती हैं। तो चलिए सुनते हैं नम्रता शुक्ला जी से उनके मनोभाव उनकी कविता के रूप में। क्रम है काव्य पाठ।
1: मैं नम्रता शुक्ला आप सबके सामने एक समसामायिक काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। और काव्य पाठ की शुरुआत माँ सरस्वती को एक छंद समर्पित करके करूँगी। सुनिएगा। देवी शारदा प्रणाम, चरणों में बारंबार शीश सादर सामने मैं आपके झुकाती हूँ। श्वेत पुष्प, श्वेत वर्ण, श्वेत स्वर्ण, स्वर्णमयी स्वर्णमयी शब्द कोश स्वरों से सजाती हूँ। साधना विहीन नहीं, आत्मा मलिन नहीं, साधना विहीन नहीं, आत्मा मलिन नहीं, तन मन धन ध्यान आप में लगाती हूँ। छंद सुर सवार दो, व्याकरण सुधार दो, छंद सुर सवार दो, व्याकरण सुधार दो, सादगी से नम्रता की लालसा सुनाती हूँ, सादगी से नम्रता की लालसा सुनाती हूँ। अब मैं आपको उस समसामायिक गीत से जोड़ती हूँ जिसके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महाराज छत्रसाल की भूमि छतरपुर में उपस्थित हूँ और अपनी उपस्थिति महाराज छत्रसाल को एक गीत समर्पित करके करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े। श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, उनकी मुरली में जो हीरे जड़े हुए हैं उनसे जोड़कर ये

0: पंक्तियां, श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, वो अस्पाद चापो तले हीरे भू घड़े, वो अस्पाद चापो तले हीरे भू घड़े, कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कौशल महान सूरवीर संगठक बने, कौशल महान सूरवीर संगठक बने, स्वाभिमानी राजा बुंदेल जू बड़े, स्वाभिमानी राजा बुंदेल जू बड़े, वसुंधरा पे छत्रसाल सौर मय लड़े, वसुंधरा पे छत्रसाल सौर मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। आगे सुनिएगा माता पिता के लिए। चंपत पिता को छत्रपति लाल मिला था, चंपत पिता को छत्रपति लाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था, सुत सेनापति छत्रपति वीर जन्मे थे, सुत सेनापति छत्रपति वीर जन्मे थे, मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था, मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था, लिधौरा जन्म भूमि है गाथा ध्वज गड़े, लिधौरा जन्म भूमि पे गाथा ध्वज गड़े, वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, आज हम खड़े, मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे, मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे, औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे, औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे, बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से, बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से, छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे, छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे, मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुँह पड़े, मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुँह पड़े, वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, दहाड़े छत्रसाल रंग बाज उड़ गए, दहाड़े छत्रसाल रंग बाज उड़ गए, प्रचंड युद्ध ठान शत्रु दल उखड़ गए, प्रचंड युद्ध ठान शत्रु दल उखड़ गए, सौर्य सौर्य मोर से मुगल मुंड धड़ गए, सौर सौर मूर से मुगल मुंड धड़ गए, मुहमोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए, मुहमोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए, सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े, सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े, वसुंधरा पे छत्रसाल सौर मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। धन्यवाद। झूठ फरमाते मिले। धन्यवाद।
1: बहनों अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ नम्रता शुक्ला से। बहनों हर लड़की के दो परिवार दो घर होते हैं, एक मायका जहां माँ का प्यार पिता का दुलार होता है, और एक ससुराल जहां सास ससुर का लाड़ होता है। इन दो परिवारों के बीच पूरे जीवन भर संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है हर महिला के लिए। मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना भी एक कला है, जिसमें समझदारी धैर्य और सम्मान की जरूरत होती है। आप इन तरीकों से एक खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। ससुराल की मूल्य और जीवन शैली मायके से अलग हो सकती है, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपेक्षाएँ कम रखें। सास ससुर का आदर करें और घर के कामों में मदद करने की पेशकश करें। अगर ससुराल वाले बात करें तो ध्यान से सुनें और अपनी धारणाओं को बीच में ना लाएं। त्योहारों और छुट्टियों में बारी बारी से दोनों परिवारों के साथ यानी ससुराल और मायके में समय बिताएं और दोनों ही परिवारों को अपना समझें और प्यार दें। घर के भीतर आप अपना एक निजी स्थान बनाएं और ससुराल वालों के निजी मामलों में दखल को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। पति को सेतु बनाएं, पति को एक समझदार

साथी के रूप में रखें जो दोनों घरों का सम्मान करें। जब संभव हो ससुराल में सीधे बात करें, अपना पक्ष रखें, ना कि पति के माध्यम से। मायके और ससुराल की तुलना करने से बचें। अपने घर की बातों या कमियों की चर्चा मायके में ना करें। मायके या ससुराल से कोई भी मांग या बात आए तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, पति के साथ मिलकर विचार करें। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रही हैं तो अपने पति या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें। बहनों, सीमाएं तय करें, ये समझें कि आप सभी को खुश नहीं रख सकती और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें। ससुराल में सम्मान, काम में सहयोग और बातचीत को महत्व देकर आप मायके और ससुराल के बीच एक स्वस्थ और खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। जिस तरीके से मायका आपका अपना घर है, उसी तरीके से ससुराल भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां आपका पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सकता है यदि आप मायके और ससुराल के बीच तुलना ना करें। एक महिला एक बांध की तरह होती है जो अपने अंदर भावनाओं के गुबार को बांध लेती है, और ये भावनाएं यदि ससुराल से जुड़ जाएं तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है और आप ससुराल को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती हैं, कुछ इस तरह से।

मैनो, अभी हम सुन रहे थे फिल्म दिल्ली 6 से रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजूमदार की आवाज़ में ये सुरीला सा गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत दिया था AR रहमान और रजत ढोलकिया ने। मैनो, गर्मियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा और हमारे शरीर को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने के लिए अगर आप धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जो SPF 30 या 50 है उसका प्रयोग ज़रूर करें। जेल बेस्ड क्लींजर से दिन में 2 बार सफाई करें और हल्का मॉइस्चराइज़र लगाना सबसे ज़रूरी है। बहनों, खूब सारा पानी पिएं, खीरा दही खाएं और

धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को ज़रूर ढकें ताकि टैनिंग और घमौरियों से और मुहासों से बचा जा सके। बहनों, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं, जूस पिएं और नारियल पानी पिएं। साथ ही सुबह की सैर ज़रूर शामिल करें और योगा करें, जिससे आपकी जो त्वचा है उसमें खिंचाव रहेगा। और यदि आप फेस योगा करती हैं तो आपके फेस पर एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। हफ्ते में एक या दो बार हल्के स्क्रब से डेड स्किन हटाएं, जिससे रोम छिद्र बंद नहीं होते। सूती और ढीले कपड़े पहने, खीरा और गुलाब जल का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी त्वचा को ठंडक मिले। गर्मियों में हल्का मेकअप करें या बिना मेकअप के रहें ताकि त्वचा सांस ले सके। दही और बेसन का पैक बनाकर लगाने से टैनिंग कम होती है। साथ ही एलोवेरा जेल लगाएं और धूप से झुलसी त्वचा को ठीक करें। मैंने रात को अपने चेहरे को ज़रूर पानी से धोएं और मॉइस्चराइज़र लगाकर सोएं। गर्मियों का मौसम अपनी तेज़ धूप, पसीने और धूल मिट्टी के साथ आता है, जो आपकी त्वचा की चमक छीन सकता है। अपनी स्किन को समर रेडी बनाने का मतलब है उसे हाइड्रेट रखना और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना। गर्मियों में अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अंदर से आपकी स्किन रिकवर होगी। जिसमें आप अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूज और कई तरीके के जूस का उपयोग कर सकती हैं, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देंगे। और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने से आपको बचना चाहिए और हमेशा ठंडे पानी से चेहरा धोते रहना चाहिए, जिससे आपके त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद ना हो पाए। अगर आपकी त्वचा पर एक्ने हैं या मुहासे हैं तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब जल और तुलसी वाला स्क्रब और ड्राई और सामान्य त्वचा के लिए नींबू, चंदन और बेसन, हल्दी और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मी के सीज़न में सूरज की किरणें 12 से 4 बजे के बीच बहुत सख्त होती हैं। इस समय आप बाहर निकलने से बचें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी आँखें धूप के चश्मे से कवर हों और आपके ओठ बाम के साथ सुरक्षित हों। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आँखों के चारों ओर की त्वचा बहुत नाजुक होती है और जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर बहुत अधिक गर्मी आपकी आँखों को लग रही है तो उन्हें स्वच्छ और ठंडे पानी से धो लें। आलू के रस में रुई को भिगोकर आँखों पर लगाएं। यदि समस्या बनी रहती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। स्वच्छता गर्मी से निपटने में काफ़ी मदद करती है। दिन में दो बार स्नान करने से न केवल आपकी त्वचा ताज़ा रहती है बल्कि गर्मियों में सुस्ती का मुकाबला करने में भी मददगार है। तो ये तो थी संक्षिप्त सी जानकारी। और अब बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूँ, तो बस चलते चलते आपके साथ दो लाइनें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी बहन मंजू व्यास को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये बधावा।

छक्की लाल प्रजापति व साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुशाग्र सक्सेना की गाई गजलें।

0: कुशाग्र सक्सेना की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
8: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
10: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
7: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ
7: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरूह का लिखा और राजेश रोशन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। यूएई के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने देश में बेहद सम्मानित नेता बताया।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। श्री मंत्री ने कहा कि NTA में बड़ी सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली ना हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया के साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रह सके।
2: नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा।

0: घोषणा की है, समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि नई व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। श्री यादव ने बताया कि सरकार सभी वर्गों और समाजों से सुझाव लेकर आगे की राह तय करेगी। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चोइथराम एमवाई और अमलतास अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आपको समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिनों तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा में श्रम विभाग द्वारा कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम योगी मानधन योजना के पंजीयन किए गए। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
3: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन।

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी देख निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं।

0: से शुरू होगा 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं।

0: ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म साजन से। आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत।

बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फूल और कांटे का अलका याग्निक और कुमार सानू का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म रोज़ा का गीत। बोल पी के मिश्रा के हैं और संगीत है एआर रहमान का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने।

जाजौरिया, गगनदीप राजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना चाहते हैं फिल्म मन का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाया हुआ गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। लीजिए सुनिए।

राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म कसूर का ये गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, बोल समीर के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग पर, व्यापार पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है, उसकी पहली बैठक भी सम्पन्न हो गई है। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा सुनिएगा शाम 7:21 पर। आज इसमें आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे देवेंद्र खुराना। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का राग जयंत मल्हार में सितार वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये बधावा।

छक्की लाल प्रजापति व साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कुशाग्र सक्सेना की गाई गजलें।

कुशाग्र सक्सेना की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। त्रिशूल, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला का गीत। बोल हसन कमाल के हैं और संगीत है शिव हरी का।

किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कामचोर का गीत। इस गीत को लिखा था इंदीवर ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

प्रेम गीत इस फिल्म का गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। बोल इंदिवर के हैं, संगीत जगजीत सिंह का।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म खून भरी मांग का गीत। बोल इंदिवर के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

धनवान इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज धार जिले की भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है। कोर्ट ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा ASI और केंद्र सरकार को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत बेहतर और सरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में ये है फिल्म सड़क का गीत। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में। बोल फैज़ अनवर के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने, और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

दिल। इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था फिल्म हिना का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की दूसरी कड़ी।

0: सुधीजन को मेरा बारंबार प्रणाम। पंचतंत्र की कथाएं सचमुच मोहित करने वाली होती हैं। पिछली कथा में मैंने बताया, दमनक ने संजीवक से वचन लिया कि राजा से मित्रता करके वो दमनक को भूल ना जाए, नहीं तो दंतिल ने गौरव को अपमानित करके जो भूल की थी वही हालत संजीवक की होगी। और दमनक ने संजीवक को दंतिल की कथा कुछ यूं सुनाई।
1: वर्धमान नाम का एक नगर था, वहां एक दंतिल नामक आभूषणों का व्यापारी था। वो राजा का विशेष कृपा पात्र था। कहा जाता था उसके समान चतुर व्यक्ति शहर में नहीं था। एक बार की बात है, गौरम नामक व्यक्ति जो राज दरबार में सेवक था, वो दंतिल से अपमानित हो गया।
2: समझता क्या है वो दंतिल? महाराज का बड़ा मुंह चढ़ा है ना, सबके सामने मुझे अपमानित करके उसने अच्छा नहीं किया। इस भांडपति दंतिल को राजा की कृपा से वंचित ना करा दूं तो मेरा नाम भी गौरव में नहीं। परंतु कैसे, उसकी कुछ भी क्षति करना मेरे बस में नहीं है। क्या करूं, क्या
3: क्या हुआ इतनी

0: देर रात किस पर इतने क्रोधित हो रहे हो? आज तक तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलते मैंने कभी नहीं सुना। देख रही हूँ कल रात से ही परेशान से दिखाई दे रहे हो।
1: नहीं भगवान, जब दिल दुखता है तभी हाय निकलती है। दंतिल आजकल आसमान में उड़ने लगा है।
0: दंतिल? कौन दंतिल? वही व्यवसायी।
1: अरे छोड़ो, बड़ा आया व्यवसायी, अपने आप को महाराज का सगा वाला समझने लगा है।
0: क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने?
1: कुछ मत पूछो। मैं उस रात को उस दंतिल की बेटी की विवाह समारोह में गया था ना।
0: हाँ?
1: पूरा राज परिवार भी वहाँ पर उपस्थित था। मैं महाराज के साथ ही था। मुझे वहाँ पर महाराज के पास बैठा देखकर उसने मुझे बहुत अपमानित किया और धक्के देकर विवाह स्थल से निकाल दिया।
0: क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। परंतु आप शांत रहिए, अपने जीव को दुखाइए मत। शुभ कार्य में किसी निर्धन का श्राप लेकर वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुनिए, चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है।
1: नींद किसे आएगी, मेरे तो सीने में आग जल रही है। जब तक उससे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ, एक ही उपाय है। अपने आप को महाराज के बहुत निकट समझता है ना, क्यों ना उसके विरुद्ध महाराज के कान भर दूं। फिर जो करना है वो महाराज स्वयं ही करेंगे।
2: अरे गोरम्भ
3: जी,
2: आज सूर्य उदय के पूर्व ही तुम्हारा काम शुरू हो गया और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई।
3: क्या करूं महाराज, एक घटना देखकर रात भर नींद ही नहीं आई
2: है,
3: इस कारण जल्दी ही काम पर आ गया।
2: ऐसी कौन सी घटना देख ली तुमने?
3: कैसे कहूं महाराज, मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूं।
2: निर्भय होकर कहो।
3: क्षमा चाहता हूं महाराज, उस दंतिल की दृष्टता तो देखिए, उसका साहस। नाना महाराज, मैं ना कह पाऊंगा।
2: देखो, जो बात शुरू की है उसे पूरा करो, मेरा आदेश है।
3: उसका साहस इतना बढ़ गया है कि वो महारानी का आलिंगन करने लगा।
2: क्या बक रहे हो गोरम, होश में तो हो। महारानी का आलिंगन? दंतिल?
3: अपराध क्षमा करे महाराज, जुआ खेलते हुए रात नशे में मुझे नींद नहीं आई। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा हो सकता है उसी का असर हो।
2: दोष, बिना विचारे इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी यहां से निकल जाओ।
3: जो आ गया महाराज, मैं चला।
2: कहीं ऐसा तो नहीं ये गोरम सत ही कह रहा हो? दंतिल के साथ साथ ये भी तो अंतापुर में बेरोक टोक जाता था। महारानी की दंतिल के प्रति किंचित आ सकती हो? तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। नहीं, आज के बाद दंतिल का राजभवन में प्रवेश बंद बंद बंद बंद बंद बंद।
4: दंतिल जी, आपका राजभवन में प्रवेश निषेध हो गया है।
5: अरे ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं महाराज का विशेष कृपा पात्र हूँ?
4: परंतु महाराज ने स्वयं ही ये आदेश दिया है।
5: हूँ? मैंने तो सपने में भी राजा अथवा उनके किसी प्रियजन का अनिष्ट नहीं किया, फिर महाराज मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गए?
6: अरे भाई द्वारपाल
4: जी,
6: सावधान रहना, ये श्रीमान दंतिल जी हैं, राजा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हें राजा की ओर से पुरस्कार अथवा दंड पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें रोकने से आप लोग भी मेरी तरह अपमानित हो सकते हैं।
5: लगता है ये सारी चाल गोरम्भ की ही है। अरे भाई गोरम्भ, मुझे अपने किए पर पश्चाताप है। आप कृपया उस अपमान को भूलकर मुझे क्षमा कर दें।
3: आपने मुझसे क्षमा मांगकर

0: मेरे मन का कलुष मिटा दिया। आपने सबके सामने क्षमा मांगकर मुझे बहुत सम्मानित किया है। अब आप मेरे बुद्धि कौशल एवं राजा के अनुग्रह को देखिए।
1: आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
0: महाराज की जय हो। आप सर्वज्ञ हैं, परंतु शौच स्नान आदि क्रिया के समय ककड़ी खाना उचित नहीं है महाराज।
2: गौरम, कैसी अनर्गल बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है?
0: देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूँ। नींद के नशे में मेरे मुख से कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें महाराज।
2: मैंने जन्म से आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया। इसने अर्ध निद्रा में जिस प्रकार की ये बात कही, सम्भवतः दंतिल की कहानी भी झूठी हो। मैंने व्यर्थ ही उसे अपमानित किया। मैं आज ही उसे बुलाकर उचित सम्मान देकर पूर्ववत नियुक्त कर दूंगा।
3: इस कहानी को सुनाकर दमनक ने संजीवक को बता दिया कि जो गर्व के कारण राजभृत्यों का अनादर करता है उसकी हालत दंतिल जैसी होती है। संजीवक से वचन लेकर उसने पिंगलक से संजीवक की मित्रता करवा दी। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि पिंगलक अब पूरी तरह संजीवक के वश में हो गया। संजीवक और पिंगलक की मित्रता देखकर पूरी जानवरों की सेना दुखी हो गई। अब न राजा उनका ध्यान रखते थे, ना ही भोजन की व्यवस्था करते। सारा दिन केवल संजीवक के साथ विचरण करते रहते। भोजन के अभाव में सभी की स्थिति दयनीय हो गई थी।
4: ऐसे कैसे जीवन कटेगा दमनक? सिंहराज तो अपना अरण्य धन तक भूल गए हैं। भूख के कारण सभी की दशा दयनीय हो गई है।
5: हाँ करकट, कहते हैं ना, सूखा पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो, पक्षी दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार सेवक कितने दिनों तक बिना जीविका के प्रतीक्षा करते रहेंगे।
4: मुझे तो लगता है हमारा मंत्री पद पुनः पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है?
5: अरे करकट, राजा की दृष्टि में इस समय हम नगण्य हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दें।
4: दमनक, ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है।
5: आपका कथन ठीक है, ये सब मेरा ही दोष है। मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूँ। जैसे आषाढ़ भूत कलिका और जुलाहे की स्त्री।
4: कैसे?
5: सुनो, किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे से उसके पास ढेर सारा धन एकत्र हो गया।
6: इस धन की पोटली को इधर उधर रखना ठीक नहीं। मैं इसे अपने कक्ष में ही रखता हूं। उफ, ये अच्छा जंजाल मेरे सिर पर आ गया। वैसे भी धन सदैव मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही होता है। कौन कौन है वहां? अंदर आओ भाई।
7: प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम आषाढ़ भूति है। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें।
6: आयुष्मान भाव,
7: यह संसार आसार है, मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें भगवान।
6: वत्स, तुम युवावस्था में ही जीवन से विरक्त हो गए हो। तुम धन्य हो, मैं दीक्षा रूपी अनुग्रह तो कर ही दूंगा, परंतु रात्रि के समय तुम मठ में प्रवेश नहीं करना।

0: द्वार पर बनी घास की कुटिया में शयन करना।
1: आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है भगवान।
0: वत्स, आषाढ़ भूत, पूजा की तैयारी हो गई?
1: जी गुरुदेव, आप पूजन प्रारंभ करें।
0: ओम,
1: पता नहीं कितने दिन इस बुड्ढे की सेवा करना पड़ेगी। मन में आता है किसी दिन इसकी हत्या कर डालूं और धन लेकर चंपत हो जाऊं।
0: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः।

0: एक दिन पंडित देव शर्मा ने आषाढ़ भूति से कहा कि उनका एक शिष्य उन्हें निमंत्रण देकर गया था कि उसके घर गृह प्रवेश में आना है। वो चाहते हैं कि आषाढ़ भूति भी उनके साथ चले। मार्ग में
1: दिन चढ़ाया, वत्स, मैं स्नानादि से निवृत्त होकर आता हूँ, थक गया हूँ। सामने ही जलाशय है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मेरे लौटने तक मेरी इस पोटली की रक्षा करो।
2: जो आज्ञा गुरुदेव।
1: ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः।
2: इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। आप स्नान कीजिए और मैं तो चला ये पोटली लेकर।
1: वत्स, अब तुम जाकर। वत्स, वत्स कहाँ हो? आषाढ़ भूति, आषाढ़, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो भाग नहीं सकता। हाय हाय, मैं लूट गया। अरे आषाढ़ भूति, मुझे लूट कर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया?
0: और इस प्रकार विलाप करते हुए देव शर्मा आषाढ़ भूति के पद चिन्हों को ढूंढते हुए सूर्यास्त के समय एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक जुलाहा अपनी स्त्री के साथ समीप के नगर में जा रहा था। सूर्यास्त काल में द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करने वाला देवत्व को प्राप्त करता है। ऐसा सोचकर स्त्री को आतिथ्य के लिए छोड़कर वो जुलाहा स्वयं चला गया। परंतु पति के जाते ही वो सज धज कर अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने चल पड़ी। रास्ते में पति को देखकर घर वापस आ गई। परंतु उसके पति को संदेह हो गया।
3: अरे पापिन, तू आभूषणों से लदकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी? तेरे बारे में बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं मैं। आज अपनी आंखों से देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। ये ले, ये ले, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुझे इस खंबे से बांध दूंगा। अब भाग तू।
4: अरे ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? देवदत्त के पास कैसे जाऊं? ये कलिका तो इधर ही आ रही है। सखी कलिका, कलिका सुनो।
5: अरे सखी, अरे देवदत्त वहां तुम्हारी बाट जो रहा है, तुरंत जाओ।
4: लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो।

0: तुम जाकर उससे कह देना कि आज रात्रि में उससे मेरी भेंट होना संभव नहीं है।
1: नहीं, ये उचित नहीं। तुमने उसे वचन दिया था। अरे वो बात जो रहा है।
0: अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ सखी, किस कठिन बंधन में रहकर मैं कैसे वहां जा सकती हूँ। और ये मेरा पापी पति भी तो यही पड़ा है।
1: अरे सखी, शराब के नशे में बेहोश ये सूर्योदय के बाद ही जागेगा। ऐसा करो, मुझे अपने स्थान पर बांधकर तुरंत ही देवदत्त से मिलाओ।
0: हाँ हाँ हाँ सखी, यही ठीक रहेगा। तुम जो कहती हो मैं वही करूंगी।
1: रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। सखी को अब तक आ जाना चाहिए था। अरे अरे, कहीं ये नींद से जाग न जाए।
2: अरे अरे पापिस्ता कुलटा, यदि आज से है तो पर पुरुष गमन नहीं छोड़ते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल,
0: कुछ बोलू तो ये मेरी आवाज पहचान लेगा। मैं चुप ही रहूंगी, मैं चुप ही।
2: अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? बोल, तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी। रुक रुक, अबे रुक, मैं तेरे शस्त्र से तेरे नाक काट दूंगा। अबे ले, ले, ले, ले।

0: देव शर्मा तो इस पूरी घटना को देख रहा था। धन चोरी होने के कारण उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुलाहे की पत्नी की उल्टा प्रवृत्ति को देख रहा था। प्रेमी से मिलने के बाद रात के अंतिम प्रहर में जब जुलाहे की पत्नी घर वापस आई, तब
1: सखी कलिका, तुम सकुशल तो हो ना? कहीं मेरे जाने के बाद ये पापी उठा तो नहीं था?
2: तुम आ गई, नासिका को छोड़कर बाकी मैं सकुशल हूँ।
1: क्या
2: तुम शीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जिससे इस पापात्मा के देखने के पूर्व ही मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे पति भी लौटते होंगे, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा।
1: हाँ सखी अवश्य। परंतु सखी, तुम अपने पति से नासिका के घाव के विषय में क्या कहोगी?
2: देखती हूँ, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। अब देर मत करो, आओ आओ, मैं तुम्हें बांधूं। लो बांधो।
3: क्यों पर पुरुष गामने, अब भी कुछ बोलेगी या नहीं? आए, नाक तो मैंने काट दी, क्या कान भी काट कर और कठोर दंड दूं? बोल।
4: अरे मूर्ख पापी, मेरे जैसी सती नारी को कौन अपमानित कर सकता है? बड़े आए मुझ पर संदेह करने वाले। समस्त लोकपाल मेरी बात ध्यान से सुने। यदि मेरे मन में भी सतीत्व है और मैंने कभी स्वप्न में भी पराए मर्द की कामना नहीं की है, तो देवतागण मेरी नासिका को पहले जैसा अक्षत बना दें। और यदि मेरे कहे वचन में तनिक भी मिथ्या हो, तो ईश्वर मुझे जलाकर राख बना दें।
3: अरे जा जा, बड़ी देखी है तेरे जैसी सती, जरा चेहरे से हाथ तो हटा है।
4: देख दुष्ट, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पूर्ववत ठीक हो गई है।
3: ये कैसे हो सकता है, नीचे खून अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने खुद प्रहार किया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? तो क्या मेरी पत्नी सचमुच निर्दोष है? मैंने व्यर्थ ही पाप मोल लिया? गांव वालों की बातों में आकर मैंने सीता जैसी पत्नी पर संदेह करके घोर अन्याय किया है। देवी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो। ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे, ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे। बैठो।

0: हे प्रभु, ये स्त्रियां तो असुरों की भांति माया जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सन्यासी हूं, संसार के इस माया जाल से दूर। उफ।
1: मुझे तुरंत ही घर पहुंचना होगा। मेरी नासिका से जो खून बह रहा है उसका क्या करूं? अभी से मेरे स्वामी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सखी को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गई। लो, घर आ गया, अब क्या करूं?
2: प्रिय, प्रिय, प्रिय, प्रिय, सुनो, आज बड़ा विलंब हो गया है, सूरज चढ़ाया है। मुझे राज दरबार में बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए शीघ्र पहुंचना है। तुम एक काम करो, मेरे औजारों की पेटी जल्दी दे जाओ तो मैं चला जाऊं जल्दी।
1: ये मौका अच्छा है। मैं धार धार उस तरह उसकी ओर जोर से फेंकती हूँ। अगर वो मेरी ओर उसे वापस फेंक देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये ले, पकड़।
2: अरे, अरे, ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इस कारण तेरा साहस अत्यधिक बढ़ गया है। अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुझे उचित दंड देना होगा।
1: नहीं,
2: ले ये उस्तरा।
3: मैं मर गई। कोई है? इस पापी ने बिना किसी अपराध के ही मुझ जैसी पतिव्रता नारी की नाक काट दी।

0: न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
1: श्रीमान, इस नापित ने बिना किसी अपराध के ही अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया है, अतः इसे उचित दंड दें।
0: नापित, तुमने अपनी पत्नी पर प्रहार क्यों किया? क्या इसने परपुरुष गमन किया था या चोरी की थी? इसका अपराध क्या है, बोलो। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मौन तुम्हें अपराधी साबित करता है। सिपाहियों का कथन भी ठीक जान पड़ता है। तुम दोषी हो। इस निर्दोष स्त्री पर प्रहार करके तुमने घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा।
2: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
0: कौन हो तुम जो इस समय अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हो?
2: मैं सन्यासी हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। ये बेचारा नापित अन्यायपूर्वक मारा जा रहा है। ये निरपराध है। मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुने।
3: और फिर देव शर्मा ने सविस्तार दोनों वृत्तांत को सुनाया। उसकी बात को सुनकर न्यायपाल ने नापित को मुक्त कर दिया और कलिका को दंड स्वरूप कान काटने का आदेश दिया। देव शर्मा ये सब देखकर अपने धन की चोरी को भूलकर पुनः मठ में लौट गया। दमनक की ये कथा सुनकर करकट संतुष्ट हुआ या नहीं, या दमनक को कोई और कथा सुनानी पड़ी, ये जानने के लिए कीजिए अगले सप्ताह का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी सायंकालीन सभा यहीं आरंभ होती है। कुछ ही समय में आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के परिणाम हमारी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जब दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ीं तब भारत अलग खड़ा रहा। श्री रिजिजू ने कहा कि कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से लेकर करीब 100% तक महंगा हुआ है, लेकिन भारत ने पेट्रोल में सिर्फ 3.2% और डीजल में 3.4% की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज धार जिले की भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है। कोर्ट ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा ASI और केंद्र सरकार को दिया है। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में मजबूत प्रदर्शन, व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

अयम् निजः परो वेति गणनालघु चेतसाम् उदारचरितानाम् तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अर्थात ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार के समान होती है। साथियों, इसी विचार के साथ स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र पीयूष चतुर्वेदी। तो साथियों, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, परिवार हमारी पहली पाठशाला है जहाँ प्रेम, त्याग और संस्कार सीखने को मिलते हैं। परिवार ही समाज के साथ हमें जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, बुरे से बुरे वक्त में

0: हमारे साथ खड़ा रहता है। इंसान को जीवन के हर मोड़ पर परिवार की जरूरत होती है। इसीलिए साथियों, हमारे आज के कार्यक्रम की पहली चर्चा परिवार से जुड़ी हुई है, जिसका विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी विश्व परिवार दिवस। साथियों, प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवारों की सामाजिक संरचना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1993 में एक प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार ये दिवस सन 1994 में मनाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष भी था। विश्व परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष एक थीम के अंतर्गत मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विश्व परिवार दिवस की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। साथियों, सिर्फ एक दिन किसी दिवस को मनाने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हम देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं कि जीवन का असली सुख कहाँ है। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन ने परिवार का आपसी संवाद छीन लिया है। साथ बैठकर खाना खाने और ठहाका लगाने की जगह सोशल मीडिया के स्टेटस ने ले ली है। मगर तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ही ना हो जाए, रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का कोई विकल्प नहीं है। परिवार वो दीपक है जो तूफानों में भी रोशनी देता है, बशर्ते हम उसे लगातार तेल और बाती देते रहें। तो चलिए साथियों, आज से ही अपने परिवार को प्राथमिकता दें और इस दुनिया को सच्चे अर्थों में परिवार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये मनमोहक गीत।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म से, जिसमें आवाज थी जावेद बशीर की, गीतकार थे रजत अरोरा और संगीत दिया था प्रीतम ने। तो साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। ये विषय है पेट्रोकेमिकल उत्पाद। पेट्रोकेमिकल दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रो यानी पत्थर का तेल या क्रूड ऑयल, और केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ। सीधी सी बात है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग से जो भी रासायनिक चीज बनाई जाती है वो सब पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी से कुर्सी मेज बनाता है, वैसे ही वैज्ञानिक तेल के अणुओं को तोड़ मरोड़ कर हमारे काम की हजारों चीजें बना लेते हैं। इसे यूं समझिए, रिफाइनरी में जब कच्चे तेल को बहुत गर्म किया जाता है तो उसके बड़े बड़े अणु टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रैकिंग कहते हैं। इन्हीं को जोड़कर हमें प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, तो कभी पॉलिएस्टर की कमीज, कभी मजबूत टायर और कभी खुशबूदार साबुन। अब जरा गौर कीजिए, सुबह से रात तक हम कितनी पेट्रोकेमिकल चीजों को छूते हैं। टूथब्रश, पानी की बाल्टी, फ्रिज में रखा डिब्बा, स्कूल बैग, पेन, खिलौने और मोबाइल फोन का कवर, ये सब पेट्रोकेमिकल्स का ही कमाल है। साथियों, केवल प्लास्टिक ही नहीं, खेतों में डाले जाने वाली यूरिया खाद, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कुछ विटामिन तक इस परिवार के सदस्य हैं। सच पूछिए तो आज की जिंदगी में ऐसा शायद ही कोई पल हो जब हम पेट्रोकेमिकल उत्पादों से दूर हों। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जितनी आसानी से ये हमें मिल जाते हैं, उतनी ही मुश्किल से ये गलते हैं। पानी की एक बोतल को जमीन में पूरी तरह से खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे गाँव, शहर, नदियाँ और समंदर प्लास्टिक के कचरे से भरते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम तीन आदतें पक्की कर लें, कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल जरूर करें। थैला लेकर के बाजार जाएं, प्लास्टिक की बोतलों की जगह धातु की बोतलों को चुनें और कचरे को गीला सूखा अलग करके ही फेंकें। ये छोटे बदलाव हमारी धरती को बड़ी राहत देंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपसे की एक छोटी सी चर्चा पेट्रोकेमिकल विषय पर। और साथियों, अब आपको सुनवा देते हैं वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार होंगी प्रियांशी अवस्थी।
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह विषय है जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर उसका प्रभाव। यह विषय हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हम जहाँ रहते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, उन सभी पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम ध्यान से अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि आज शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह सब कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। जनसंख्या किसी भी देश की शक्ति मानी जाती है। अधिक जनसंख्या का अर्थ अधिक मानव संसाधन भी होता है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाए, तब वही जनसंख्या समस्या बन जाती है। आज भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण भूमि, जल, वन, ऊर्जा और रोजगार जैसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। पहले के समय में लोगों की आवश्यकताएं सीमित थीं। गांव में प्राकृतिक जीवन

जीवन अधिक था। पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ती गईं। अधिक घरों की आवश्यकता हुई, अधिक भोजन की आवश्यकता हुई और अधिक वाहनों और उद्योगों की जरूरत हुई। इन सब का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। सबसे पहले यदि हम वनों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हुई है। लोगों को रहने के लिए भूमि चाहिए, उद्योगों के लिए जमीन चाहिए, सड़कें और भवन बनाने के लिए स्थान चाहिए। इसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। पेड़ों केवल लकड़ी ही नहीं देते बल्कि वे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाने में सहायता करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जब जंगल कम होते हैं तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, कई जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ जाती है। आज हम सभी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे शब्द सुनते हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। इन समस्याओं के पीछे बढ़ती जनसंख्या और उससे होने वाला प्रदूषण एक बड़ा कारण है। जब अधिक वाहन सड़कों पर चलेंगे, अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी, अधिक बिजली की खपत होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में पड़ेंगी। यही गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। वायु प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बड़े शहरों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल, धुआं और जहरीली गैसें वातावरण में फैल रही हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों का पड़ता है। दमा, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा चाहता है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। नदियों, तालाबों और झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक, कचरा और घरेलू गंदगी जल स्रोतों में मिल रही है। आज कई शहरों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यदि समय रहते हमने जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी मिलना कठिन हो जाएगा। भूमि प्रदूषण भी बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। अधिक उत्पादन के लिए खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक और कचरे के ढेर शहरों और गांवों में दिखाई देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती है और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब संसाधन सीमित हों और जनसंख्या अधिक हो तब समस्याएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार भी इसी का परिणाम है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर आते हैं जिससे शहरों में अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हर छोटी चीज प्लास्टिक में पैक होकर आती है। यह प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचकर जल जीवों को भी हानि पहुंचाता है। यह समस्या भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। आज तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, नई नई मशीनें, उद्योग और सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन यदि विकास पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ कर किया जाए तो वह लंबे समय तक लाभकारी नहीं हो सकता। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। इसे ही सतत विकास कहा जाता है।

0: सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन सुरक्षित रहें। सरकार भी समय समय पर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, पानी बचाए, बिजली की बचत करे और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिणाम ला सकती हैं, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करना, वर्षा जल संचयन करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरे को इधर उधर ना फेंकना। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का स्थान दिया गया है, नदियों को देवी माना गया, पेड़ों की पूजा की गई और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखा गया। इसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि जंगल केवल किताबों में दिखाई दे, यदि मौसम पूरी तरह असंतुलित हो जाए तो मानव जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित और संतुलित अवश्य किया जा सकता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार थी प्रियांशी अवस्थी। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अल नीनो आ रहा है तो इस बार सूखा पड़ेगा, या इस बार ला नीना है तो झमाझम बारिश होगी। मगर क्या आपको पता है कि अल नीनो और ला नीना आखिर होता क्या है? तो चलिए साथियों, आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि आखिर अल नीनो और ला नीना होता क्या है। साथियों, अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और हवा के पैटर्न में होने वाले दो विपरीत बदलाव हैं, जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये अल नीनो सदन ऑसिलेशन चक्र का हिस्सा है। अल नीनो होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक गर्म होना है, जिसके प्रभाव से ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की ओर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति बनती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बनती है। साथियों, अल नीनो को अक्सर गर्म अवस्था या स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है। वहीं साथियों, ला नीना होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक ठंडा होना है, जिसके प्रभाव से व्यापारिक हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, जो गर्म पानी को पश्चिम यानी कि एशिया की ओर धकेलती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में भारी मानसून वर्षा होती है, वहीं पेरू और इक्वाडोर में सामान्य से कम वर्षा होती है, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। ला नीना को ठंडी अवस्था एंटी अल नीनो या स्पेनिश में अल वीजो द ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अल नीनो की घटना आमतौर पर एक साल से अधिक समय तक नहीं रहती है, जबकि इसके विपरीत ला नीना की घटना एक साल से तीन साल तक बनी रह सकती है। इस तरह से साथियों, अल नीनो में समुद्री पानी गर्म होता है और भारत में सूखे का कारण बनता है, जबकि ला नीना में पानी ठंडा होता है, जिससे भारत में अच्छी बारिश होती है। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की अल नीनो और ला नीना विषय पर, और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशिकी 2 फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे जीत गांगुली। तो साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दे देते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट। पदों की संख्या है 1200। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है एक अंतराल का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: अंतराल पूर्ण हुआ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म आन मिलो सजना से, किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिलाषा से, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 36 घंटे से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत है सपन चक्रवर्ती का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है अफसर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपकी कसम से, किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

0: अंतराल पूर्ण हुआ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अबूधाबी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश में 75 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूँ की खरीदी रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बम्पर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में आज दो और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहाँ खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल हो सकेंगे। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन

0: किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। भोपाल के उद्धवदास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल,
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों

0: में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है, और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे लीजिए अब।

0: अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

किरदार जोगेंद्र सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म

0: कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था।

0: उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थीं। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands,

आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है टाइगर 3।

का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्वीन से, अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फितूर से, अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म का नाम है वॉर।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप

0: हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अंतराल यहीं पूर्ण होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही समय में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी

0: रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें आज व कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश व आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सबसे पहले आज आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शाम 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा। अब एक नजर कल आकाशवाणी क्षमा कीजिए अब एक नजर आज आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम खेल जगत आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉली सक्सेना। रात 9:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकता है रात 10:00। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में। अब एक नजर कल आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम लोक संगीत सुना जा सकता है 9:15 पर। कार्यक्रम अनमोल धरा का समय होगा 9:30 पर। 9:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी सुना जा सकता है सुबह 10:00। 10:05 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आकाशवाणी भोपाल से ही शाम 7:21 पर आप सुन सकते हैं ग्राम सभा। अब एक नजर कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने सुनिएगा 11:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा 12:00। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी सुनी जा सकती है 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनिएगा 1:00। 1:30 पर समय होगा लोक संगीत का। 1:45 पर सुना जा सकता है सुगम संगीत। ये तीनों कार्यक्रम हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 2:00 सुनिएगा फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुना जा सकता है 2:30 पर। युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा शाम 5:02 पर। सुनिएगा फिल्म संगीत। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग 3 सुनिएगा शाम 6:00। इसमें आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता यादें अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत शाम 6:00। 6:30 समय होगा फिल्म संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिएगा 7:45 पर। सुर्खियों में सुना जा सकता है रात 8:00। 8:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। दिल्ली से सुनिएगा कार्यक्रम चित्र भारती रात 9:30। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10:00 आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए एएसआई और केंद्र सरकार को सौंपा प्रबंधन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण कार्यों का किया निरीक्षण, बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। और नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, अगले साल से सीबीटी मोड में आयोजित करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहां देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन एएसआई के हाथ में ही रहेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार के भोशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडीपी पीओ भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी

0: प्रशासन भी सब मिलके भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति भी होती है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा है कि NTA में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मेट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्होंने खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उधदास मेहता सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई टोकन से उर्वरक न देने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 381,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा। कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवे वाय सभी भैया बहनन को अमृता बहन की राम राम। भैया बहनों, आज हम जुड़ गए हैं आपके संगे अपने गांव, अपने खेत और अन्य बातें करवे खिलाने। देखो भैया बहनों, आज कृषक मात्र अनाज नहीं उगाते बल्कि देश की विकास में भी अपना योगदान देते हैं। जैसे खेत हरे भरे रहते हैं, वैसे ही हमारा देश भी कृषकण के कारण खुशहाल रहते है। आज हमारी थाली में जो रोटी आ रही है उनके पीछे कहीं ना कहीं आप भैया बहनन की दिन रात की मेहनत है। और हम तो यही कहेंगी कि खेती को प्रगतिशील व उन्नत बनाएं, इसके लाने नई नई तकनीकें अपनाएं, जैविक खेती की ओर बढ़ें और जो नई नई सरकारी योजनाएं आ रही हैं उन पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसे आप खेती में नवाचार कर सकते हैं। अब बात करें कृषक अपने खेतों में नए नए तरीका से खेती, सिंचाई, बीजोपचार और अपने हिसाब से खेती को उन्नत बनावे के तरीका अपनाते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बात है स्मार्ट सिंचाई, है ना जी। ये हम कहते हैं कि हम ऐसे पानी को इस्तेमाल करें कि पानी जितना हमारे खेतन में चाहिए उतनों ही उपयोग में आए, ज़्यादा पानी को व्यय ना हो और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी फसल लहलहाए। तो स्मार्ट सिंचाई की यदि हम बात करें तो इसको मतलब है फसल को उतने ही पानी देने हैं जितना तो ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पानी को सही समय पर और सही तरीका से देने हैं। ऐसे में नई नई तकनीकों को उपयोग करो जाते हैं जिससे पानी की बर्बादी ना होए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फसल अच्छी तरीके से बढ़े। अब नई तकनीकों की बात करेंगे भैया स्मार्ट सिंचाई का है तो जैसे कि ड्रिप सिंचाई हम करते हैं जिसमें 40 से 60% तक पानी की बचत होती है। इसके अलावा स्प्रिंकलर खेती, स्प्रिंकलर सिंचाई होते हैं जी जो बड़े खेतन में बीच में एक पंप लगा दो जाते हैं और चारों तरफ खेतन में पानी फेंकत है। इसके अलावा सेंसर आधारित सिंचाई है जी, ये हम मोबाइल से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि आप खेत की मेड़ों पर बैठ के भी आप इस सिंचाई को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जा तो बात भाई इसे कहते हैं ना कि पानी बचाएं, जितनी आप पानी बचाएंगे उतनी ही फसल लहलहाएगी, कम खर्चा और ज़्यादा लाभ, इसको ध्यान रखें। तो देखो जा चर्चा तो हमारी खेतन से जुड़ी हो गई, अब बात करें अपने परिवार की। आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब परिवार की जब बात होते हैं ना तो कुछ शब्द नहीं बचते हैं, कहे कि आज को दिन ही हमें कहते हैं कि परिवार को कितना महत्व है जो हमें समझने हैं। और आप और हम जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिवार में रहवे से हम कई तरह की परेशानी से बचते हैं और जीवन सरल हो जाते हैं। जो जुड़े बड़े परिवार में रहते हैं वे जानते हैं कि बच्चों के लाने परिवार प्रथम पाठशाला है। संस्कार और मूल्य हमें परिवार से ही मिलते हैं। मुश्किल के समय में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं हमारा परिवार, है ना। और यदि परिवार साथ में हो ना तो कितनी भी बड़ी हमारे ऊपर कोई भी बात आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए तो परिवार साथ में खड़ो रहते। तो चर्चा अपन करें, मैंने अभी सुनत है बुंदेली समाचार।

0: और यूरोप के 6 दिनों के दौरा पे आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डा पे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनको स्वागत करो। यूएई के F-16 लड़ाकू विमान ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दो हतो। दो ही नेतन के बीच में रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के संगे संगे $5 अरब के निवेश पे सहमति बनी हती। LPG आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनावे के समझौता भी भये। श्री मोदी ने कही हती कि भारत हर हाल में यूएई के संगे कंधा से कंधा मिला के खड़ो है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपया प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में जब बढ़ोतरी हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कही हती कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगो भाव है, उतई भारत ने मात्र 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी करी है। उन्होंने कही हती कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सह के आम लोगों को महंगाई से बचाओ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज धार जिला की भोजशाला में हिंदू मंदिर घोषित कर दो है। कोर्ट ने कही हती कि इते माँ सरस्वती को मंदिर हतो और जो एक संस्कृत शिक्षा को केंद्र रहो है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो फैसला सुनाओ है। कोर्ट ने मुसलमानों को नमाज की अनुमति देवे वाए पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं और परिसर को प्रबंधन ASI और केंद्र सरकार को सौंप दो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंच के सड़क चौड़ीकरण कार्यों को जायजा लो तो उन्हें अधिकारियों के संगे सभी कामन की तेजी और गुणवत्ता के संगे समय पे पूरे होवे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कही हती कि जे कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुँचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण को भी अवलोकन करो। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही हती कि नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करी जा रही है। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल गए हैं। उन्होंने बताई हती कि अगले साल से जा परीक्षा कंप्यूटर आधारित मतलब कि CBT मोड में हुई है। मंत्री ने कही हती कि NTA में बड़े सुधार जरूरी हैं ताकि भविष्य में धांधली ना होए। श्री प्रधान ने कही हती कि सरकार नहीं चाहत कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखत भाई केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ा के 100 लाख मैट्रिक टन कर दो है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक कृषकों ने पंजीकरण कराव है और खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ो गए है। उनके संगे इते खुले जंगल में विचरण करवे वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। जे दो ही रविवार 2026 में बोस्वाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर करी हती और उनने खुद नामीबिया से लाए पहले 8 चीतों को छोड़ो हतो। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताई कि सभी चीता स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पे मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ो फैसला लो है। अब भोपाल में होवे वाई सभी बैठकें ऑनलाइन हुई हैं। दूर दराज से आवे वाई अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इमें शामिल हुई हैं। इसके संगे ही विभागीय जाँच और पेशियाँ भी अब ऑनलाइन हुई हैं। भोपाल में श्यामला हिल स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव को आयोजन करो जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलवे वाई ई प्रदर्शनी में सुबह 11 से संजा के 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्कन को देख सकते हैं। प्रदर्शनी देखने के लिए आयोजकन ने 100 रुपया प्रति व्यक्ति एंट्री फीस रखी है। भोपाल के उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज प्रारंभ हो गई है। जा सीरीज 20 मई तक चलेगी और इनमें पुरुष व महिला दो ही वर्ग के मुकाबला खेले गए हैं। जा सीरीज आगामी एशिया कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बुंदेली समाचार समाप्त भए।
1: बुंदेली समाचार
0: डेली समाचारन के बाद भैया बहनों को पुनः स्वागत है और आज शुक्रवार है तो आज अब हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आपकी पाती आपके फिल्मी गीत जी में आपके भेजे गए फरमाइश

0: बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई

खुशी पत्रन से आपके फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम को पहलो पत्र हमें भेजो है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इनने फरमाइश करी है आप तो ऐसे ना थे फिल्म से, ये गीत की फरमाइश जिए गाओ है मोहम्मद रफ़ी ने। तो सुनत है जो गीत।

बहनों, एक मधुर गीत के संगे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और अब आगे बढ़े कार्यक्रम में। अगलो पत्र हमें भेजो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने। और संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। जो गीत है फिल्म पुलिस गिरी से और ये गाव है पलक मुंचाल और यशराज कपिल ने। सुना था जो गीत।

गीतन के संगे अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज अपन ने बात करी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार को महत्व का होते हैं जो आज आप उन लोगों से पूछें जो आधुनिकता के, आज हम देख रहे हैं आधुनिक ज़माना में आज हमारे गांव के बच्चा या अन्य लोग जो शहरों में रह रहे हैं और उतने अकेलेपन से जो जूझ रहे हैं, तो उनसे पूछो कि आप परिवार को महत्व का होते हैं। परिवार जब होते हैं ना तो छोटी छोटी मुश्किलें तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और यदि बड़ी भी कोई बात हो तो जो हमारे परिवार के बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे परिवार के बड़े हैं वे हमें समझा बुझा के हमें विपदा से निकालते हैं। आज हम देख रहे हैं डिप्रेशन, BP या अन्य ऐसी कई बीमारियाँ युवाओं में जल्दी से फैल रही है। काय आपके अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी कछु आपके अंदर को दिल में है वो आप कोई से कह नहीं पा रहे, और ऐसे में होत का है ये घुटन कहीं ना कहीं हमें ऐसी बीमारियों को न्योता देते हैं। लेकिन जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं ना तो कहते हैं एक को 100 गिना सुख बढ़ जाते हैं, और जो दुख होते हैं ना वो 100 से एक पे आ जाते हैं। तो अब हम समझें परिवार को का महत्व है। चर्चा अपनी चलत रहे और अब कार्यक्रम में अगलो पत्र हमें भेजो है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा ने संगे संगे ईगीति फरमाइश करी है। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद एवं पूरे माखीजा परिवार ने एक गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म हम आपके हैं कौन से, और ये गाँव है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। सुनाते हैं जो गीत।

भैया बहनों, गीतन को सिलसिला चल रहा है। आपके भेजे गए पत्रन से ये मधुर गीत आप सुन रहे हैं। और अब अगलो पत्र हमें भेजो है गांव भड़भूजी, जिला आगरमालवा से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता, आयुष, ओम प्रकाश ने ये गीत की फरमाइश करी है, जो है फिल्म जख्म से, और ये गाव है अलका याग्निक ने।

भैया बहनों, अब और कार्यक्रम में आगे बढ़े और अगलो पत्र हमें भेजो है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, बीबी आरजू जाजौरिया ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म रेडी से, और ये गाव है तुलसी कुमार और के ने सुनते हैं जो गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ें। अगलो पत्र हमें भेजो है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने संगे संगे गीत की फरमाइश करी है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म टॉयलेट से, और ये गाओ है सोनू निगम और श्रेया घोषल ने।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा। कुछ ही समय में आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
1: प्रधानमंत्री की अगर 5 देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात, उनका रुख समझें और अपनी भारत की बात बताएं। तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले, अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है, क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां पे तेल का आना जाना रहता है।
1: देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर हॉर्मुज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही, देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहाँ से आ रहे हों तेल लेकर के या एलएनजी लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहाँ पे माइन बिछाई तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और यूएस के बीच में जो संघर्ष है उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इंपोर्ट्स में भी। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
1: देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूं, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए, किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारे मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध, 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, एलएनजी भी हमें अब चाहिए, क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए एलएनजी भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें ज़रूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से अभी, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारे आयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
0: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं, वियरा। ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
1: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। 5 जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना, तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि

0: ब्राजील ही देखिए, जब डी डॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशन भी हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी। इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: During the course of two-day foreign ministers meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. These three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS: strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, as well as the future direction of the grouping.
1: BRICS ke theme jo hai usme kaha gaya hai ki hum koshish karenge resilience, innovation, cooperation aur sustainability, aur unhone baat ki hai कि रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम, मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा। उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा, और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब के लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो, वहां से हम शुरू करें, और तब उस पर हम वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाएं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी। अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को, क्या बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है। जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There was a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive, and development-oriented solutions through

0: सस्टेन्ड एंगेजमेंट।
1: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
2: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए। वीटो सिस्टम जो है

0: आज की दुनिया में जहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है। अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहां पर वो प्रस्ताव टूट जाता। तो ऐसे में तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीटो पावर को खत्म करना या इसको और डाइल्यूट करना, प्रतिनिधित्व पूरक करना, प्रतिनिधित्व परक करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा परिषद में बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उनको भी पावर दी जाए, या मतलब जो वीटो पावर जो 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहाँ सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही
1: है। जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है, इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान यही है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जलडमरू मध्य हैं, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन,
1: ये सारे मैन मेड
0: है। लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुर्मुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहाँ के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और चिन्मयी की आवाज में। गीत को लिखा है इकबाल पटनी ने और संगीत है AR रहमान का। फिल्म का नाम है शिवाजी द बॉस।

कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म द ट्रेन से, केके की और क्षितिज जीतारे की आवाज में। गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है मिथुन का। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म से ये खूबसूरत नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत शफक के रंग से, रेखा भारद्वाज की आवाज में। गीत को लिखा है इंदिरा वर्मा ने और संगीत है सुदीप बैनर्जी।

0: जाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुबैदा से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है ए आर रहमान ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय हो चला है एक अंतराल का, तो आइए लेते हैं ये अंतराल।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में दिल्ली से समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और

0: 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी

0: प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग

0: दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent.

0: Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands during the next 24 hours. The Indian Wushu team delivered a commanding performance at the 11th Sanda World Cup, winning 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals in Macau. The women athletes in particular put up a stellar display by securing both gold medals from the 6-member contingent. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded the historic campaign today by winning 2 golds and 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, फ्रेंच ओपन विश्व के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है, जिसका आयोजन हर वर्ष फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्ले कोर्ट पर किया जाता है। क्ले कोर्ट पर गेंद की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और लंबी रैलियां देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और रणनीति की असली परीक्षा होती है। फ्रेंच ओपन में दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पुरुष और महिला एकल के अलावा युगल और मिश्रित युगल मुकाबले भी आयोजित किए जाते हैं। फ्रेंच ओपन केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि खेल भावना, संघर्ष और उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों को हर वर्ष इस टूर्नामेंट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता। वार्ताकार है डॉली सक्सेना।

नमस्कार श्रोताओं, पेरिस की लाल बाजारी पर साल के सबसे बड़े मिट्टी के संग्राम यानी फ्रेंच ओपन 2026 का बिगुल बज चुका है। अब हम आपको ले चलेंगे रोला गेरो के उस ऐतिहासिक मैदान में, जहां 24 मई से 7 जून तक टेनिस की दुनिया के दिग्गज अपना पसीना बहाएंगे। आइए जानते हैं इस बार के टूर्नामेंट की मुख्य विशेषताएं, दावेदार और वो रोमांचक संभावनाएं जो इस आयोजन को खास बना सकती हैं। फ्रेंच ओपन दुनिया का एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो लाल मिट्टी पर खेला जाता है। यह सतह न केवल धीमी है बल्कि गेंद को भी अधिक उछाल देती है, जिससे खेल शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाला हो जाता है। यहाँ अंक जीतने के लिए खिलाड़ियों को लंबी रैलियां लड़नी पड़ती हैं। इसे टेनिस की दुनिया की सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है। इस साल पहली बार ग्रैंड स्लैम इतिहास में खिलाड़ियों को कनेक्टेड डिवाइस पहनने की अनुमति दी गई है, जिससे वह मैच के दौरान अपनी फिटनेस और बायोमेट्रिक डेटा को ट्रैक कर सकेंगे। इस समय जबकि टेनिस के दूसरे ग्रैंड स्लैम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग की ओर बढ़ चुके हैं, फ्रेंच ओपन ने इस साल भी मानवीय लाइन जजों पर अपना भरोसा कायम रखा है। इस बार पुरुष वर्ग का मुकाबला काफी भावनात्मक और अनिश्चित नजर आ रहा है। इसमें दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन कैलरोस एल्कराज कलाई की चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। दूसरी तरफ नंबर वन जेरिक सिनर अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनका मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा, जो हाल में ही मैड्रिड मास्टर में फाइनल तक पहुंचे थे, जबकि 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच भले ही उम्र के साथ थोड़े धीमे हो गए हों, लेकिन रोला गेरो में बड़े मंच पर उनको कम आंकना तो भूल होगी। पूर्व चैंपियन स्टैन वावरिका के लिए ये आखिरी फ्रेंच ओपन होगा। टूर्नामेंट के अंत में उन्हें विशेष विदाई दी जाएगी। महिला वर्ग में इस बार मुकाबला मिट्टी की रानी बनाम नई शक्ति के बीच है। इसमें पोलैंड की ईगा, जिन्हें पिछले 6 वर्ष में 4 बार से ये खिताब जीता है, एक बार फिर इस सतह पर अजय नजर आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ चुनौती वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सवालेंका और पिछले साल की चैंपियन कोको गॉफ ईगा के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। युवा सनसनी मीरा एड्रीवा पर भी सबकी नजर रहेगी। फ्रेंच ओपन में इस साल कुल पुरस्कार की राशि में भी वृद्धि कर दी गई है, जो कुल 61.7 मिलियन यूरो तक पहुंच गई है। खास बात तो ये है कि शुरुआती राउंड में बाहर होने वाले खिलाड़ियों की राशि में ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। पेरिस के कॉनकॉर्ड में इस बार विशाल स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ हजारों प्रशंसक मुफ्त में इस मैच का आनंद ले सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेनिक सिनर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतकर टेनिस की पीढ़ी पर राज कर पाएंगी, या फिर जोकोविच का अनुभव एक बार फिर युवा जोश पर भारी पड़ जाएगा। महिला वर्ग में क्या ईगा स्वायत्तेक अपना 5वां खिताब जीतकर इतिहास रचेंगी? इन सभी सवालों के जवाब 7 जून को कोर्ट फिलिप पर मिलेंगे। टेनिस प्रेमियों के लिए आने वाले 15 दिन रोमांच, जुनून और लाल मिट्टी की धूल के बीच तपे महान संघर्ष के साक्षी बनेंगे। इसमें पूर्व चैंपियन स्टैन वावरिका के लिए ये आखिरी फ्रेंच ओपन होगा। टूर्नामेंट के अंत में उन्हें विशेष विदाई दी जाएगी। इसके महिला वर्ग में इस बार मुकाबला मिट्टी की रानी बनाम नई शक्ति के बीच है। पोलैंड की ईगा स्वियातेक, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में 4 बार ये खिताब जीता है, एक बार फिर इस सतह पर वह अजय नजर आ सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ चुनौतियां वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सवालेंका और पिछले साल की चैंपियन कोको गॉफ ईगा के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। युवा सनसनी मीरा एंड्रीवा पर भी सबकी नजर रहेगी। 1891 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट टेनिस के 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम में से एक है। इसे आधिकारिक तौर पर रोला गेरो कहा जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के एक साहसी फ्रांसीसी पायलट के नाम पर रखा गया है। अन्य ग्रैंड स्लैम जैसे विंबलडन और यूएस ओपन के मुकाबले में यह टूर्नामेंट सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मिट्टी की कोर्ट पर गेंद की गति धीमी हो जाती है और बाउंस ऊंचा होता है। अंक जीतने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि सटीक रणनीति और लंबी रैलियां खेलने का धैर्य की भी आवश्यकता होती है। राफेल नडाल, जिन्हें किंग ऑफ किले भी कहा जाता है, उनकी विरासत आज भी इस कोर्ट के कण कण

में बसी हैं। भले ही चोटें या उम्र बाधा बने, लेकिन रोला गेरो पर उनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन सा ही लगता है। वहीं नोवाक जोकोविक की निरंतरता आज भी युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। महिला सिंगल्स में ईगा स्वियातेक जैसी खिलाड़ी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। उनकी स्टाइलिंग तकनीक और कोर्ट कवरेज ने महिला टेनिस के स्तर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसकी बड़ी विशेषता लाल बजरी है। वास्तव में यह मिट्टी नहीं बल्कि सफेद चूना पत्थर की परतों के ऊपर पिसी हुई ईंटों का पाउडर होता है। यहाँ खिलाड़ियों को दौड़ने के बजाय फिसलना करना पड़ता है। जो खिलाड़ी इस आर्ट में माहिर होते हैं वही पेरिस में सफल हो पाते हैं। यह मैच अक्सर 4 से 5 घंटे तक चलते हैं। चिलचिलाती धूप और धीमी कोर्ट के कारण खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों और फेफड़ों की असली परीक्षा देते हैं। वैसे भी मई के अंत और जून की शुरुआत में पेरिस का मौसम और रोला गेरो का माहौल जादुई होता है। कोर्ट फिलिप चैटियर और सुजैन लैंगलैन जैसे प्रतिष्ठित स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे रहते हैं। दुनिया भर के टेनिस प्रेमी टीवी पर व डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका रोमांच उठाते हैं। पेरिस की फैशन राजधानी होने के कारण खिलाड़ियों की परिधान भी यहाँ चर्चा का विषय रहते हैं। फ्रेंच ओपन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है बल्कि खेल भावना का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि जीत केवल तेज सर्विस या ताकतवर शॉट से नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने से मिलती है। जैसे जैसे फाइनल की घड़ी करीब आती है पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है। चाहे कोई नया खिलाड़ी चैंपियन बने या कोई पुराना दिग्गज अपनी बादशाहत बरकरार रखे, फ्रेंच ओपन ये हर साल होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में यह दूसरा है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद और विंबलडन और यूएस ओपन से पहले आयोजित होता है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी लेकिन 1925 तक ग्रैंड स्लैम स्तर का टूर्नामेंट नहीं बन पाया था। फ्रेंच ओपन विश्व का सबसे प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो वर्तमान में क्ले कोर्ट्स में खेला जाता है। 1975 तक फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा प्रमुख टूर्नामेंट था जो खास पर नहीं खेला जाता था। क्ले सतह की विशेषताओं के कारण जो लंबी रैलियां और उच्च शारीरिक मांग को बढ़ावा देती हैं और चैंपियनशिप के लिए पुरुष की 7 राउंड के सर्वश्रेष्ठ 5 सेटों की आवश्यकता के कारण फ्रेंच ओपन को टेनिस में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट माना जाता है। इन दिग्गज व युवा खिलाड़ियों पर होगी सबकी नज़र। पेरिस के लाल बजरी पर होने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का 125वां संस्मरण पिछले वर्ष से काफ़ी अलग और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कार्लोस अल्कराज के चोट के कारण हटने की खबर से टूर्नामेंट पर पूरा परिदृश्य बदल गया है जिससे इस बार खिताब की नई जंग शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इस बार किन किन खिलाड़ियों पर सबकी नज़र टिकेगी। पुरुष वर्ग में इस बार यानिक सिनर सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आए हैं। 2025 में अल्कराज के साथ ऐतिहासिक फाइनल खेलने वाले सिनर ने मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर जीतकर अपनी क्ले कोर्ट फॉर्म साबित कर दी। सिनर का लक्ष्य पहली बार रोलैंड गैरोस खिताब जीतकर अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करना होगा। इसके अलावा अलेक्जेंडर कले कोर्ट में बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। वे अपने पहले ग्रैंड स्लैम की तलाश की ओर हैं और इस बार पेरिस में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नोवाक जोकोविच जो 24 ग्रैंड स्लैम विजेता और 3 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन जोकोविच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैस्पर रूड लाल बजरी के स्पेशलिस्ट रूट जो 2022 और 2023 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं इस बार फिर खिताबी रेस में बने हुए हैं। महिलाओं में ईगा का रिकॉर्ड अद्भुत है। वह इस साल अपना 5वां खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। इसके अलावा एरिना सबलिंका भी फोकस में है जिन्होंने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह फ्रेंच ओपन ट्रॉफी के लिए सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। 2025 की चैंपियन कोको गॉफ अपने खिताब का बचाव करने के लिए तैयार है। उनकी गति और डिफेंस क्ले कोर्ट में बहुत काम आती हैं। क्या सिनर अपना पहला खिताब जीतेंगी या सबलिंका के वर्चस्व को खत्म कर देंगी? पेरिस की लाल मिट्टी पर इन सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।

0: अभी आपने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थी डॉली सक्सेना। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। आज इसमें आपने सुनी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर विशेष वार्ता। वार्ताकार थी डॉली सक्सेना।
7: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म परदेश से। गीत को लिखा है हेमा सरदेसाई ने, क्षमा कीजिए, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है अनु मलिक का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमको दीवाना कर गए से, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, सुना चाहा है आप सभी ने। घंटाघर चौक खंडवा से इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पटेल नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजी जाजोरिया। बीड शहर महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। तो आइए सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म झूठा कहीं का से किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है आर डी बर्मन का। सुनना चाहा है आप सभी ने तिरोड़ी महाराष्ट्र से। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने और अर्जुन गवनेकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवीन वर्मा, रीता वर्मा और शुभम। नेपाल पैलेस सागर से इस गीत की फरमाइश की है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। तो आइए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म यकीन से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनना चाहा है आप सभी ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरालीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, रजत वर्मा और शिवांगी वर्मा ने। सुपरमार्केट देवास से इसी गीत को सुनना चाहते हैं प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जयसवानी, बिल्लू लालवानी और नितिका लालवानी। गंगेड़ी जिला उज्जैन से इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान। तो आइए, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरी जंग से लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाहा है आप सभी ने राजा राम नगर देवास से। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, निकेश अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल। रूपाखेड़ी देवास से इस गीत को सुनना चाहा है हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, शोभना और शिवाय ने। जेल रोड देवास से इस गीत को सुनना चाहते हैं नवीन वर्मा, बबलू वर्मा, कालू भैया, लोकेंद्र वर्मा। तो आइए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है वापस। सुनना चाहा है आप सभी ने, शांतिनगर खरदौस कला जिला उज्जैन से इस गीत को सुनना चाहते हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस, फलक, अफसा और अयान दुलावत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से इस गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, नीलम वर्मा और रागिनी मिस्त्री। तो आइए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसका अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के

0: पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTI की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakha. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of